बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज आल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल अपने देखने

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sonar Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ।

वेल राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार आफ्टर द न्यूज़। और तब भी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक एंजॉय कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को। जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे। The next song is right now, specially dedicated to you.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एवी दिस साइड. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक विल ऑन राइज रेडियो 103.2 एफएम. व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लासिक सॉन्ग हियर. वेल राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तब भी ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. स्टे ट्यून्ड टिल 11 o'clock.

हे गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी बट आई एम अ

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. दिस इज एवी द साइड. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: Big things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

once again. Welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

What a lovely song. क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw St Paul's AODS presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live, interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बैक ऑफ द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। तख्तीर की लकीरें हाथों में रुक गईं, कदमों की आहटों से मंजिल ठहर गई, अपनों की आरजू

प्यास ने, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया, हर बार एक नया।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
0: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
0: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
4: Chill maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro, maro,

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

सड़क पे खुले मैदान में हमारी तरह कलम कल्ले बैठे हैं आप या बैठे हैं अपनों के दरमियान में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आयनु, वेलकम, खुश आमदीद। कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी हाँ जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ। हर संडे के दिन यहां पे आपके साथ मुलाकात होती है, साथ रहता है खूबसूरत सा, महफिल सजती है। महफिल जनाब ऐसे होती है जैसे गुलो गुलजार होते हैं किसी चमन के, किसी बाग के, और बहुत सारी कलियां, बहुत सारे फूल, आप सब यानी के हमारे साथ शामिल होते हैं इस खूबसूरत सी महफिल को मजीद सजाने के लिए। और ढेरों ढेर सारी बातें मुझे सिखाने के लिए, नई नई बातें सीखता हूं आपके पास आके। अच्छा, अब मुझे लगता है कि मैं बोला वाला नहीं रहा। अब जब मैं कहता हूं ना सीधा सादा जलेबी की तरह, तो वाकई जलेबी में जो पहले मैं कहता था जलेबी की तरह, क्योंकि मीठे की वजह से आप सबके प्यार में मीठी मीठी बातें करने को दिल करता था। अब जनाब वाकई जो जलेबी में बल होते हैं ना, आप सबके साथ रह के ना, आप सबकी सोहबत में रहते रहते अब मुझे लगता है कि जलेबी की तरह बल आ गए हैं मुझ में भी। थोड़ा सा सियाना हो गया हूँ, शाना हो गया हूँ, ये मेरा वहम है या खुशफहमी है, कुछ भी कह लें, लेकिन कमाल और इल्ज़ाम जो भी कह लें, क्रेडिट कहते हैं या इल्ज़ाम कहते हैं, ब्लेम कहते हैं, ये आप सबको जाता है। मैंने कहा बता दूं आपको, अब आप इस पे क्रेडिट लेके खुश हो जाएं या बिल्कुल मुंह बसोड़ लें, खफा हो जाएं कि हमने कहां काशिफ को शियार किया है। आपने शियार नहीं जनाब, हशियार किया है हमें। और आपको बताएं कि मैं जब यहाँ पे आ रहा होता हूँ तो एक दिल में एक मस्ती सी होती है, खुमार सा होता है, प्यार का बुखार सा होता है, और थोड़ा नहीं जनाब हद से ज्यादा बेशुमार सा होता है। और जो समझने वाले हैं उनको हमारे अंदाज से, बातों से, अल्फाज से, अंदाज से ये मस्ती, ये जोश, ये खुमार, ये बुखार महसूस होता होगा। और होता है तो आपकी कॉल्स हमारे साथ शामिल होती हैं जनाब। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, आप रोक ना सकें खुद को, बड़े ही आपका दिल, जो दिल है ना आपका, जिसकी आप कम कम सुनते हैं, अगर आपका दिल करे तो जनाब कॉल कीजिएगा। 01274306666 के जरिए इस महफिल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल्स सारी ऑफ एयर होती हैं, ऑन एयर कॉल्स कोई भी नहीं होंगी, आपकी आवाज़ सिर्फ हम सुन पाएंगे, हम अपने अल्फाज में उसको अपने पास से आपकी बात को जनाब आप दो बताएंगे तो उसके साथ दो और दो चार लगा के हम सब सुनने वालों को वो बातें बताएंगे। और सुनने वाले हमारी फैमिली हैं जनाब, कोई गैर नहीं, हमारे अपनों में ये बात रहेगी। जो भी आप हमें बताते हैं, पट्टी पढ़ाते हैं, जो भी आंट शांट हमें सिखाते हैं। और जनाब जो बात मैं कर रहा था कि आते हुए जनाब इतनी मस्ती होती है कि एक हाथ में मेरी कॉफी होती है, एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनकी बड़ी मौज होती है। आप एक हाथ से ड्राइव कर लें, एक हाथ से आप खुजली कर लें, एक हाथ से आप चाय पी लें, एक हाथ से कॉफी पी लें, जूस पी लें, गर्मी है तो मतलब एक हाथ आपका वेला होता है। वो जो मैनुअल गाड़ियां होती हैं वो गियर स्टिक का आपको गियर चेंज करना पड़ता है, ऑटोमेटिक गाड़ियां जब से आई हैं तो थोड़ा सा वेला होता है, एक हाथों से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं जो चाहें आप।
तो हम उस हाथ का इस्तेमाल, जो वेला हाथ है, उसको हम वेला नहीं रहने देते, कॉफी पीते पीते आते हैं। लेकिन जनाब यकीन करें कि हर संडे, आपको बता दूं, ये जो मैं बातें 3 घंटे करता हूं आपके साथ, शर्माते शर्माते, बड़ी कम बातें, आपने नोट किया होगा, बड़ी कम बातें करता हूं। उसकी वजह ये होती है कि वो मैं गरम गरम काफ़ी जब जल्दी जल्दी मैं पीता हूं ना यहां पे आपके पास आते हुए, तो ध्यान मेरा आपकी तरफ होता है, दिमाग को एक शौक चढ़ा होता है, आपका प्यार इश्क और मोहब्बत चढ़ी होती है दिमाग को। तो जब आपके सर पे मोहब्बत का बुखार हो तो फिर आपका ध्यान नहीं होता कि आप जहर का प्याला पी रहे हैं या कॉफी का गिलास पी रहे हैं, जग पी रहे हैं, मग पी रहे हैं। तो जनाब मेरा मुंह जल जाता है, हर संडे मेरी जुबान जलती है, और ये जुबान जल जाने की वजह से फिर जब मैं स्टूडियो में आता हूँ तो इस वजह से फिर मैं कम कम बातें करता हूँ, आपने नोट किया होगा। और जनाब क्या करें, अब आपसे मोहब्बत हो गई है तो हो गई है, सारे जमाने के सामने कह रहे हैं, अगर किसी ने आज तक आपको ना कहा हो, इंतजार ही कोई करता रह गया हो बेचारा या बेचारी, मुंह ही देखते रह गए हूं आपका खूबसूरत सा, और आपकी खूबसूरती में खो गए हूं वो आपकी नजरों में, हम नहीं खोने वाले, हम प्यार का इजहार करेंगे आप सबसे, क्योंकि जनाब मोहब्बत है तो है, यही मोहब्बत खींच के लाती है, क्योंकि मोहब्बत की नहीं चाहती, हो गई है ना।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
3: Big things are happening at Sunrise Radio.
4: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
3: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
4: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

बैक टू वेलकम हो गया आप सबका। जी जना, मैं हूँ आपका अपना काशिफ और आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 103.2 एफएम पे और 100.6 एफएम पे अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और दुनिया भर में सनराइज रेडियो डॉट एफएम के जरिए आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं साफ और शफाफ आवाज में। जनाब, कुछ कॉलर्स हमारे साथ रहे और बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे गपशप हो रही थी और ब्रेक का टाइम भी आ चुका था और हमें अच्छा नहीं लगा कि हम किसी जब भी किसी कॉलर से ऑफ एयर बात कर रहे होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपकी बात को काटूं और बोलूं कि जनाब हुण फोन रख दियो। नहीं जनाब, तो जनाब हमने एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन शिकार किए और उन शिकार वो जो शिकार हमने किए उनका नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक जोक हमारे एक दोस्त आए थे उन्होंने सुनाया। जबार भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जबार साहब आए और उन्होंने हमें बहुत हंसाया। उन्होंने कहा, जनाब काशिफ आपको पता है मैं आपको कॉल क्यों करता हूँ। मैंने कहा, जी क्यों करते हैं आज बता दें। और कहते हैं, जनाब हम आपको ना थोड़ा सा छेड़ने के लिए फोन करते हैं, फिर आप जब छिड़ जाते हैं फिर हमें आपको सुन के और ज्यादा मजा आता है। आप सब सुन रहे हैं ना, हमतन खरगोश है ना आप सब। जी जी बिल्कुल, गौर से सुनिएगा कि हमें बाकायदा जनाब एहतमाम करके नियत करके कॉल मिला के इंतजार करके उसके बाद हमें छेड़ा जाता है और हम छिड़ भी जाते हैं। देखें हमारी सादगी, उफल्ला कौन ना मर जाए काशिफ की सादगी पे, बल्कि कौन कौन ना मर जाए। अब ये आप सोचें जरा कि मुझे कहा जा रहा है कि हम आपको छेड़ते हैं और वो कहते हैं, जनाब हम आपको जब चाबी भरते हैं और फिर बाद में जब आपको सुनते हैं तो आप समझ जाएं हमें कितना मजा आता है। चलें जनाब, आपके सभी दोस्तों के नाम। अच्छा जवाहर भाई, आपने बताया नहीं कि ये चाबी सिर्फ आप मुझे ही भरते हैं या मुझे ही छेड़ते हैं, या ये रिस्क आप किसी और के लिए भी लेते हैं, यानी कि छेड़ने का किसी और को, या फिर आपकी ये छेड़ने की आदत जा नहीं रही और आप अब कहते हैं कि काशिफ को भी छेड़ा जाए। आप सबको छेड़ते हैं या मेरी ही लॉटरी लगी है, ये बताएं जरा। ये बात पूछना भूलिए। आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, गाड़ी की विंडो ड्राइविंग साइड की नीचे की हुई है, ठंडी ठंडी मस्त मस्त हवा आपको छेड़ रही है और आप हमें छेड़ के खुश हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। कहते हैं काम करते हुए काशिफ जी रेडियो सुनने का मजा ही अपना है। मैंने कहा ये क्यों जनाब। कहते हैं साथ में काम भी होता रहता है, बल्कि सारे काम होते हैं और साथ में रेडियो से दिल बहलाते रहते हैं। आपकी जनाब मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि तवाड़ियां पंजे की होते सिर कड़ाई च। मैं कहना जनाब वाकई आज आपकी बातें सुन के पता लग गया कि पांचों घी में और सर कड़ाई में क्या होता है। जवार भाई असी ते वेखदे रह गया, मजा तो तुसा किता वलैता गया और आप जैसे बहुत सारे समझदार लोगों ने हमें तो हमारी सादगी ले डूबी। महाराज जनाब आज सादगी की बातें मैं क्यों कर रहा हूं बार बार, और हमें जोक जो सुनाया वो जोक फिर देखते हैं बाद में टाइम मिला तो सुनाएंगे, पहले मैं अपना जोक तो फिट कर लूं इससे पहले कि आप भी कामकाज में लग जाएं, फिर आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा। जोक सुना दूं क्या याद करेंगे, मेरा जोक भी मेरी तरह का होगा वैसे, जैसे हमारी बातों का सर पैर नहीं होता ऐसे जोक मेरे बड़े मजे के होते हैं, बहुत मजे के। पहले बता दूं अगर आपको कुछ हो गया हंसते हंसते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो करवट बदल लें, ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मेरे जोक बड़े जबरदस्त होते हैं तो वो
आप जो है ना आपकी वो जो तवज्जा है वो इधर उधर ना हो जाए। तो जनाब गाने तो सुनते रहते हैं हम, आपकी बातों का इंतजार होता है। ये कहा हमने, हमें सोनिया ने, हमने नहीं कहा सोनिया को, सोनिया ने हमें कहा, इस वजह से हम लेट हो गए ओनियर आने में। अपनी तारीफ वाला किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तारीफ रब की जनाब, जिसने बनाया आप सबको इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और दिल दिया बड़ा और जर्फ दिया इतना खूबसूरत कि आप तारीफ कर सकें किसी की, यानी काशिफ की। वरना कहाँ कोई टाइम निकालता है, कॉल करता है, सुनते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं फ्री में वो भी, लेकिन तारीफ का जुमला कह दें ये तो नाइंसाफी होगी ना। अपना उल्लू सीधा, बाकी छोड़े काशिफ आया हमारे लिए। बड़ा कहता है बार बार कि मैं आपके लिए आता हूँ, आपसे प्यार है इसलिए। बड़े देखे काशिफ जैसे प्यार के दावेदार, यही सोचते हैं ना आप, पता है मुझे। जमाने ने जनाब ऐसा ऐसा वार किया है आप पे कि अब आपको काशिफ की सच्ची सच्ची बातें भी मतलबी लगती होंगी, है ना। सोचे मुझे आपसे क्या मतलब होगा, सोचे। अगर कुछ जहन में आए तो मुझे भी बताइएगा कि मुझे आखिर आपसे मतलब क्या है जनाब। वो कहते हैं ना, सांप का डरा हुआ रस्सी से भी डरता है। अब आप सांपों के डरे हुए हैं, अब आप रस्सी को भी देखते हैं बेचारी को, तो आप समझते हैं सांप ही है, कहीं डंग ना मार दे, है ना। हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, हम भी इंसान है आप ही की तरह के। हाँ बातों से मैं लगता नहीं हूं इंसान, बातों से किसी और दुनिया का लगता हूं, है ना। इंसान तो मतलब की बातें करते हैं, नफा नुकसान की बातें करते हैं, फायदे की बातें करते हैं, जहां फायदा हो वहां तल्लुक बनाते हैं। ये काशिफ बिना मतलब के बातें करता है, दिल बहलाता है, क्या बात है। आप तारीफ नहीं करेंगे तो फिर खुद ही करनी पड़ेगी ना। अच्छा जनाब जोक से याद आया, जब मैं ईयर वन में पास हुआ ना, तो मेरे डैड ने कहा कि बेटा बताओ पहली बार मेरा बेटा पास हुआ ईयर वन में क्या लेगा। मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा ख्वाब की तरह याद है, बहुत छोटा था मैं, है तो अभी भी मैं बहुत छोटा हूं आप सबसे, लेकिन ऐसे ना ख्वाब की तरह ना धुंधला धुंधला सा मुझे याद है। तो डैड ने बड़े फखर से मुझे कहा, बेटा मेरा ईयर वन में फर्स्ट आया है तो क्या लोगे। तो मैंने कहा डैडी लाल रंग की शर्ट लूंगा। तो डैडी ने मुझे जनाब बड़े फखर से लाल रंग की मेरी फेवरेट शर्ट दिलवाई। फिर जनाब मैं ईयर टू में गया तो डैडी ने कहा, बेटा अगर इस बार भी तुम फर्स्ट आ जाओ ना तो बात बन जाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का प्राइस लेके दूंगा। जनाब मैं ईयर टू में भी जिद लगा के मैं फर्स्ट आया पूरी क्लास में। डैडी ने पूछा, बताओ बेटे क्या चाहिए, मेरे बेटे को, मेरे लाडले को प्राइज में क्या चाहिए। मैंने कहा, डैडी इस बार एक और लाल रंग की शर्ट दिलवा दे। डैडी ने लाल रंग की शर्ट दिलवा दी, मैं खुश हो गया। अब जनाब मैं ईयर थ्री में गया तो डैडी ने कहा, बेटा इस बार तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, इस बार अगर तुम तीसरी बार भी लगातार फर्स्ट आओ तो मजा तब है, मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट प्राइज लेके दूंगा जो मांगोगे। लो जनाब इस बार तो चैलेंज ही लग गया, हमने मेहनत की, ईयर थ्री में भी टॉप पूरी क्लास में। डैडी खुशी के मारे बस बिल्कुल मेरी तरह बावले से हो गए। खुशी में पूछा सीने से लगा के, बेटा बताओ क्या चाहिए मेरे बेटे को प्राइज में। मैंने कहा, डैडी लाल रंग की शर्ट दिलवा दे।
डैडी ने जनाब लाल रंग की शर्ट हमें दिलवा दी। सुन रहे हैं ना मेरा जोक? अभी जोक जारी है। ये जोक हम सुना रहे हैं आपको तो कोई आम सा जोक नहीं होगा, बड़ा खास, आपको याद रहेगा जिंदगी भर। तो अभी जनाब जोक जारी है और इसको यहां तक आप रट लें, याद कर लें। ईयर 3 में टॉप किया और फिर लाल शर्ट। आगे चलेंगे इसके बाद, लेकिन पहले

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है दिन के 2:45, यानी कि 2:45 हो चुके हैं जनाब।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
5: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit flashback. Flashback as we go down memory lane. Where were you when you first heard?

जी जनाब, बाबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम बैक, बैक टू वेलकम हो गया आपका। ब्रेक के बाद आपने गाना सुना खूबसूरत सा, वो कहते ना माजी के जो झरोके थे, वो जो पर्दे थे गिरे हुए, आपकी यादों पे उनको उठाया हमने। और ये गाना आपको बहुत सारी यादें आई होंगी, याद हमें भी बहुत सारी आई, यादें बहुत सारी। अच्छा जनाब, बाबर भाई की इससे बात हुई, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। बाबर भाई, पहली बार आपने कॉल की और आपने ये वाला गाना जो अभी आप सुनेंगे जनाब, ये खास तौर पे बाबर भाई ने हमें सुनाया। ओफ यार, बड़ी प्यारी आवाज आपकी जनाब। और हमने आपको जरूर दावत दी, ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला होता है, हमारे बाकी साथी प्रेजेंटर्स पूरा वीक सुबह शाम ऑन एयर कॉल्स के सिलसिले में होते हैं, तो आप जरूर उसमें जरूर आए ताकि दुनिया को आपका टैलेंट पता लगे। आपने जिस तरह से मुझे यकीन दिलाया कि आप पहली बार कॉल कर रहे हैं रेडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता लग गया था जिस तरह से आपने पूछा कि काशिफ साहब से बात करवा दें, तो जो पहली बार कॉल करते हैं उनको नहीं पता होता है कि मैं काशिफ ही बात कर रहा हूँ। हमने कोई आगे सेक्रेटरी या कोई ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है जनाब, एडे पोश असी कोई नहीं, आप ही कॉल चुकते हैं, आप ही थानू वेट ते ला के ते फिर थ्रू कर देने हैं, क्योंकि दो दो कॉल्स आ रही होती हैं एक टाइम पे जब हमें स्टूडियो में, तो हमें एक कॉल होल्ड पे करनी पड़ती है और दूसरी कॉल पे बात करनी पड़ती है। बर्मिंघम वालों की बातें आपको सुनाएंगे जनाब। उन्होंने हमें दोबारा से ईद मुबारक कहा जो गुजर चुकी है, फिर उन्होंने कहा खाने पीने का हमने क्या खाया ईद पे, आपने क्या खाया। ये ब्रेक के बाद लंबी चौड़ी गप होगी, थोड़ी सी स्पीड मेरी इस आवर में कॉल्स लेने की स्लो थी, आपकी मोहब्बत तो उसी तरह थी जनाब, बारिश बन के हमें हम पे बरस रही थी। बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने कॉल्स की, जिन्होंने नहीं की उनका दोहरी बार शुक्रिया जनाब, क्योंकि आपका ध्यान तो हमारी तरफ है ना। बाबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और जो गाना आपने हमें सुनाया ना, वो मुझे इससे पहले कभी इतना मज़ा नहीं आया सुनने का, लेकिन आपकी जुबानी सुना तो एक एक बोल उसका दिल चीर के चला गया पता नहीं कहाँ, और दिमाग का हमारा खो गया पता नहीं कहाँ, उस जगह जहां से हमने इस दिमाग को अब खेल कूद में मसरूफ कर लिया है, बच्चा बना लिया है। दिल के जख्म आपने हरे कर दिए बहुत सारे सुनने वालों के, आज ये गाना सुन के बड़े ही प्यारे।

बोल, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग आपने गाया और हम आपके लिए ये डेडिकेट करते हैं। आइंदा भी आपसे गपशप होगी। और जनाब, जब आप किसी के हो जाते हैं तो हमने कहीं पढ़ा था प्यार का दावा जो करते हैं और प्यार का दावा जो करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। एक सिर्फ बताने वाले हर रोज आपको आई लव यू, और एक आई लव यू कहे बगैर साथ निभाने वाले होते हैं। एक कहते हैं नस्ली होते हैं, एक फसली होते हैं। फसली मतलब जो हर फसल का एक मौसम होता है, वो फसल की तरह होते हैं। बुखार प्यार का बड़ा जोरदार बुखार चढ़ा होता है उनको, उनकी बातें, उनके लव्स, आपको ऐसे ऐसे टाइटल बब्बू शोना और काशू मेरी जिंदगी जाना, पता नहीं कौन कौन से नाम टाइटल देते हैं। नस्ली और फसली ये सबके नाम करते हैं। सबने प्यार तो किया होगा ना,

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की जो चमकती धमकती घड़ी है उसमें टाइम हो चुका है जनाब 3:00 बज के पूरे 6 मिनट हो गए हैं।

जनाब वेलकम बैक और बैक टू वेलकम हो गया आप सबका। आप सुन रहे हैं काशिफ गो, आपका अपना, सिर्फ आपका। जी जनाब काशिफ आपका हाजिर यहाँ पे हमेशा की तरह तीन घंटे के लिए आपके लिए। और आप हैं जहां जहां जनाब कामकाज लगे रहे, गड्डी ड्राइव करते रहे, शॉपिंग करते रहे, कुकिंग करते रहे, या वेले बैक कॉफी का चाय का कप हाथ में फड़ के जनाब हमको सुनते रहे। जनाब बर्मिंघम वालों ने याद किया हमेशा की तरह, ब्रेडफोर्ड वाले देखते रह गए लीड्स की इटली, हडर्सफील्ड हैलिफैक्स वाले देखते रह गए मुंह पता नहीं किसका। बर्मिंघम वालों ने जनाब मुंह नहीं देखा, उन्होंने सीधा फोन देखा, नंबर घुमाया, बात की हमसे। उन्होंने कहा कि जनाब हमने बनाया था गोश्त ईद वाले दिन और गोश्त का पलाव। उन्होंने कहा कि जनाब सबने बड़े मजे ले लेके खाया, आप बताएं काशिफ आपने ईद के दिन क्या खाया। मैंने खाया मैंने खाए कबाब, मैंने खाया रोस्ट, मैंने खाई ढेर सारी ड्रमस्टिक्स, और फिर उसके बाद मैंने खाई की खादा सी मिठिया खोया लिया सेवियां, और फिर खाया गजरेला ढेर सारा जनाब खोए वाला वो भी, और फिर खाया गोश्त, और फिर खाया चिकन, और फिर खाए चावल, और फिर खाई एक सिर्फ एक सिर्फ एक उसके बाद, हाँ गजरेले और सेवियों से पहले खाई एक सिर्फ एक चपाती, बस इतना सा खाना खाया। उसके बाद जनाब वो जो ड्रिंक की बोतल होती है ना, नहीं वो वाली ड्रिंक नहीं भाई साहब, क्या हो गया आपको, छोड़ दिए हमने वो धंधे जिनके अंजाम थे बड़े गंदे। ड्रिंक जनाब क्या बात करके फंस गया मैं, फिजी ड्रिंक नहीं होती जनाब, जड़ी फिजी ड्रिंक होती है वो जिद च गैस होती और जिदा टक्कन खोलो तो दी आवाज आती है ना, हाँ वो वाली बोतल असी मुंह ला के मुंह नू ला के ना गिलास च नहीं ना पाई, कसमे गिलास च नहीं पाई ना असा वो बोतल जनाब मुंह ला के फिजी ड्रिंक। प्लीज क्लियर कर लें इस बात को, ये ना हो के बाद में एडे असी मशहूर है कोनी ते बदनाम ज्यादा हो जाएंगे होर ज्यादा, पहले घाटा सी ते जनाब वो जी फिजी ड्रिंक है ना असी फिर एडी रोटी खा के ना फिर असी मुंह ला के उन्नू ते गट गट गट गट गट पीती जनाब वो ड्रिंक दी बोतल, फिजी ड्रिंक दी बोतल। अच्छा बार बार मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, मतलब मुझे डर लगता है जनाब ऐसे ऐसे हाथ लगे हैं ना मुझे, मुझे पता आपको भी लगे हैं तो फिर क्लियर बात करनी पड़ती है ना। वो क्या कहते हैं, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, तो हम नहीं चाहते जनाब। जनाब हमें कॉल आई वजी है आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हंसाया हमें, आपने बड़ा नसाया हमें, आपने कहा आप ने देखा ही नहीं। मैंने कहा कहाँ, कहती हैं हम आपके स्टूडियो के बाहर थे। मैंने कहा नहीं कसमें आप नहीं थी, कहती हैं जब आप स्टूडियो में जा रहे थे तो हम आपके सामने थे। मैंने कहाँ, कहती हैं गाड़ी में। यार मैं गाड़ियां थोड़ी लोगों की देखता रहता हूँ, पर मेरी अकेले की गाड़ी थी पार्किंग में, तो आपने कहा जनाब हम जो वो हॉर्न बजा रहे थे आपको देख के बजा रहे थे, और वो वाइट कलर की गाड़ी सबसे आगे ट्रैफिक लाइट्स पे वगदी रोड जनाब, हमारी कनाल रोड वगदी रोड, और उस पे हम सर नीचे करके जनाब हमारी तो बाज़ोकात दीवार में टक्कर लग जाती है, खंबे में जा बजते हैं हम, रोड के साइड पे बिन है यकीन करें, उन बिनों के ऊपर हम चढ़ जाते हैं कई बार, हम इतना सर नीचे करके चलते हैं। आपने कहा सबने देखा हमारी तरफ, हमें लगता है एक आपने नहीं देखा, हमने इतनी बार हॉर्न मारे कितना रूड लगता है। मैंने कहा क्या रूड लगता है ना देखना जब कोई हॉर्न मारे या कोई हॉर्न मारे आपकी तरफ देख के, कहते नहीं जब कोई ना देखे और आप हॉर्न मारे। मैंने कहा मैं सुनने वालों से पूछूंगा हॉर्न मारना सड़क पे रूड है या आप किसी की तरफ देख के हॉर्न मारे और वो आपको ना देखे तो रूड है।
अक्सर जनाब ख्वातीन जो कहती हैं वो बस वही सच होता है, बाकी जनाब कुछ सच नहीं होता है। आजकल जो ख्वातीन कहती हैं जो करती हैं वही हक है, वही सच है जनाब। हमें बुजुर्गों ने समझाया था, किताबों में पढ़ा था कि ख्वातीन से बहस नहीं करनी चाहिए वरना देखने वाले आपको कहेंगे बड़ा ही फजूल मर्द है ख्वातीन से बहस कर रहा है, क्योंकि ख्वातीन से कोई जीत नहीं सकता। तो वजिया जी, आपने कहा दिन में रात रात है, आपने कहा कौवा चिट्टा है चिट्टा है, आपने कहा मझ चिट्टी है चिट्टी है। वैसे इंग्लैंड में मझें चिट्टी भी होती हैं ना। लेकिन जनाब ये गाना आपके लिए, आप आइंदा हमें देख के वाज मारिएगा, जोर से चीख मारिएगा, हॉर्न ना मारिएगा, क्योंकि काफ़ी एम्बेरसिंग होता है आपके लिए भी, सबके लिए भी और हमारे लिए भी। कभी कोई रोड पे हॉर्न मारता है तो बड़ा ऐसे तराह सा निकल जाता है, और बाज़ कात बंदे के पास होता ही एक आखिरी तराह बचा हुआ, तो फिर जनाब और तराह हम कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल जनाब, ख्वातीन जितनी भी हमें सुन रही हैं, आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, ये उन पे थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है, मेरी कोई जरूरत नहीं जनाब आजकल के लड़कों पे बातें करने के लिए, आजकल की लड़कियों पे बातें करने के लिए मेरी क्या जरूरत है कि मैं बोलूं जनाब कि आजकल पता नहीं कैसे कैसे जनाब स्टाइल निकल आए हैं। पहला दौर सादा होता था, नेचुरल ब्यूटी होती थी, आजकल तो तोता भी देखता है कि चोंच मेरी लंबी है, और इन लोगों ने अपने होंठ पता नहीं क्यों आगे लंबे लंबे करके लटका लिए हैं। बड़े बड़े अजीब फैशन है जनाब, बालों के, होंठों के, आंखों के, मेकअप के, किधर जा रहा है जमाना। शादीम भाई, खाली आपको जख्म नहीं लगे, हमें भी बड़े जख्म लगे हैं, सभी टैक्सी ड्राइवर्स भी।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-30 दास ब्रेडफोर्ड 7230-30।
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

अब वेलकम बैक और बैक टू वेलकम हो गया आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का और जरा आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपने गालबन कॉल की और बड़ी प्यारी बातें आपकी और आपकी आवाज बड़ी प्यारी, अंदाज बड़ा प्यारा, आपने इज्जत दी, मान दिया, शुक्रिया इसके लिए। और आप कहती हैं कि बहुत रोका खुद को और दो बार कॉल में लाई लेकिन फिर मैं ही कॉल बंद कर रही थी और मैं भी सोच रहा था कौन हमें तंग कर रहा है और हम तंग नहीं हुए, आप तंग हो गई दो बार कॉल में लाने के बाद, काटने के बाद, और फिर तीसरी बार आपने हिम्मत की, आपने कहा कि हमें डर लग रहा था। मैंने कहा किससे डरती हैं आप खुदा के सिवा? कहती हैं आपसे। मैंने कहा मेरी आवाज इतनी डरावनी है? कहती नहीं डरावनी नहीं, पता नहीं क्यों दिल की धड़कन तेज हो जाती थी जैसे ही जैसे ही कॉल मिलाती हूं। जब बेल बजती थी दो से तीन बार तो एकदम से कुछ हो जाता था तो मैं कॉल काट देती थी। जारा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये अंदाज बड़ा अच्छा लगा हमें। और मेरी सोचें जो मैं आप सबसे, आप एक बंदे से बात करते हुए आपका दिल इतना धड़क रहा था जोर जोर से, हद कर दी वैसे आपने। जी जनाब हद ही हो गई कि आपकी एक बंदे से, और वो भी काशिफ बेचारा बेजरर सा। एक्सक्यूज मी। और अच्छा जी वो एक मदारी वाला सांप आपने देखा होगा ना मदारी सड़क के किनारे, पाकिस्तान में ज्यादातर या इंडिया में वो एक सांप होता है, उसका जहर निकाल के तो मदारी जो है ना बिला खौफ खतर हजूम में पब्लिक में उसका वो सर्कस करते हैं। साडा जहर निकले होया है साडा ना डरो साडे कोलो। तो जनाब ये सर्कस वाला समझ ले हिसाब किताब है, सर्कस वाला सप कह लो, बंदर कह लो, बालू कह लो, रिच कह लो, मजा लवो बस, तुसी डरया ना करो। आपने बहुत हंसाया और मैं जब भी हंसता ज्यादा हूं ना तो मेरा गला थोड़ा सा बह जाता है, नहीं बह नहीं जाता, बैठ जाता है। गला बैठना नहीं पता आपको? हम जब पानी का कुटशुट लगाते हैं तो गले को तर करते हैं। अच्छा जी पहले उधार मुका लें। जारा ने कहा जी कॉल इसलिए भी की, मजबूर हो गई, आपने जोक मुकम्मल नहीं किया, आप सुना रहे हैं जोक लाल शर्ट वाला। जनाब लाल शर्ट वाला जोक के लिए हमें शादीम भाई ने कहा था, किसने, खान साहब ने कहा था। खान साहब कहते हैं कि उनको उनके दोस्त की याद आ गई और उनका दोस्त है, उसने उनको मैसेज किया बड़े अरसे के बाद और गाना आपने सुना था, केड़ा गाना मैं उसने लाया सी खान भाई, कोई आशकी मशूकी वाला गाना था, कोई लवी डवी सा यानी के गाना था, कोई रोमांटिक सा गाना था जो आपको लड़ गया यानी कि आपको अच्छा लगा और आपने कॉल की थी, पहली बार आपसे बात हुई थी, 2007 का कोई गाना था। अरे अरे अरे अरे काशिफ क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई। गाना जनाब उन्होंने कहा था भीड़ में तन्हाई में, ठीक है जनाब, उन्होंने कहा बहुत सारी उनकी यादें हैं भीड़ में तन्हाई में। अच्छा कुछ तो जख्म, मतलब आपने कहा जख्म लगे हैं कुछ, जनाब भीड़ में जो जख्म लगे वो तो मुझे समझ आते हैं, ये तन्हाई में आप पे कौन वार करता रहा है और कौन से वार किए कि तन्हाई में आपको इतने जख्म दे गया कोई है भाई साहब, बात सोचने वाली है ना। मैं थोड़ा सा डीप चला जाता हूँ बातों में तो मुझे ज़रूर बताइए कि कॉल करके कि कौन से जख्म हैं जो भीड़ में और तन्हाई में आपको लगे हैं, भीड़ वाले कौन से हैं, तन्हाई वाले कौन से हैं। गाना ज़रूर लगाएंगे, वैसे आपकी बातों ने भी हद ही कर दी। अच्छा दीवा आंटी जनाब अभी उधार मुकाना है, हमने बहुत सारे कॉलर्स, मैंने मेरा जो सामने एक अदद पेज पड़ा हुआ है वो भर गया है तो मुझे ज़रा सबके नाम लेने हैं, सबकी मोहब्बतों का, सबकी मोहब्बतों में पहले चूरो चूर होके उसके बाद आपकी मोहब्बत में जवाब मोहब्बत का देना है हमने जनाब, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने तो हद कर दी।
जीबा आंटी कहती हैं उनको लग गई है नजर। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हैं गला बैठ गया है, तबीयत खराब है, नसाज है। मैंने कहा दीबा आंटी आपको नजर नहीं लगी, आप जितनी अच्छी हैं आपको ढेर सारी नजरें लगी हैं और एक नजर से आपका काम तमाम नहीं हो सकता, ये ढेर सारी नजरें लगी हैं आपको। हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपका हादसा खिंच खिंच की आवाज मुझे हद हो गई है यार। तो जनाब आपकी जो हादसे की खिंच खिंच है ना, जो आप कर रही हैं हंसते हुए, उसकी आवाज मुझे BD5 से यहाँ BD3 में हमारे स्टूडियो में सनराइज रेडियो के आ रही है। आप ऐसे ही सदा खिंच खिंच करके हंसती रहें। पीनो जी रुसे मैं तुसा नाल, मिकी मनासो अल्लाह, तुसा कोल कोई नहीं कीती, ता तुसा खाली ईद ही कीती, ता बड़े मजे नी ईद कीती। ए मिकी समझ नहीं लगनी कि साड़ी आंटी दीबा की नजरां लगनियां। ए पीनो जी तुसा एडे चंगे हो, तुसा की नजर कियां नहीं लगनी? ए क्या वजह? केड़ा दम बाने हो अपने पर? दसो ना असा की केड़े टूने कीते तुसा, केड़े तवीज बाए ने कि नजरां तुसा की लगनियां ही कोई नहीं? असा की भी बासो और जनाब जो कॉलर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपकी आनिया और जानिया के सदके हद कर दी आपने भी जनाब, कभी आते हैं कभी जाते हैं। अली अराई भाई आपसे गपशप होती है, होल्ड पे रहिएगा। और सिकंदर भाई आप भी आते हैं जाते हैं, सदके हद कर दी आपने। शादीम भाई कहते हैं जनाब सभी टैक्सी ड्राइवर्स के नाम गाना लगाना है आपने। आपने कहा टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत सारे जख्म लगते हैं डेली, क्योंकि वो रोड पे होते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई जनाब, वो केड़े जख्म जड़े रोज लगते हैं वो भी टैक्सी ड्राइवर्स नू। ये गल्ला क्लियर करया करो, माड़ी सादगी की तुसा की पता होना चाहिए ना। सादे बंदे नाल एडियां औखियां औखियां गल्लां करने हो, मी क्या पता कोई टैक्सी ड्राइवर ही कॉल कर सी असा की तबासी कि ए शादम भाई ने गल्ला ना क्या मतलब है, केड़े जख्म लगने तुसा की रोडा पर। और जनाब कॉल की उन्होंने नाम नहीं बताया, अंग्रेजी में गिट पिट भी नहीं की उन्होंने। आप कहती हैं आप ब्रिटिश बोर्न है यहां की हैं और उर्दू आपकी इतनी क्यूट, इतनी म्यूट, बहुत ही स्वीट कॉल आपकी। पहली बार आपने कॉल की और मजे की बात आपने भी कहा कि हमारी एक बात ने आपको मजबूर कर दिया कॉल करने पे। आपने कहा ना इंसाफी नहीं करनी, आप जाएं और ओनियर जाके आप कहते हैं कि जो मुझे जो कुछ कहता है मैं वही ओनियर कहता हूं। अब आपको कहना पड़ेगा ओनियर जाके। आपने कहा ओनियर जाके कहें कि यहां के जो ब्रिटिश बोर्न बच्चे और बच्चियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़े वेल मैनर्ड हैं, बड़े ही तमीज वाले हैं, बड़े ही ख्याल रखने वाले हैं। आजकल के जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं जनाब, बड़ों से भी ज्यादा समझदार हैं, बड़ी अक्ल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। खुश हो गए आप? ठीक हो गया, सुकून मिल गया आपको, ठंड मिल गई आपके कलेजे को? पहली बार आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा आपसे कॉल करके, पर गिला रह गया आपकी अम्मी आंटी, आपने हमसे बात नहीं की। क्यों नहीं की? हद कर दी आपने आंटी। आप माँ बेटी के नाम ये गाना सब सुनने वालों

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
5: जी जनाब, वेलकम बैक, और बैक टू वेलकम हो गया आप सबका। सुन रहे हैं आप अपने काशिफ को सनराइज रेडियो पे। जनाब, एकदम से बहुत सारी कॉल्स फिर हमने रिसीव की शकील भाई बरली से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंटरेस्टिंग सी बातें सुनाई हमें, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा जनाब, नजर किसी दूसरे की नहीं अपनी ही लगती है। हैं, आज के बाद मैं शीशा नहीं देखूंगा, और लगता है आंटी दीपा जी को भी अपनी ही नजर लगी है। मिल गया जनाब हमें मसले का हाल। आंटी दीपा जी, आपने जितने आईने हैं घर में सब साइड पे कर दें, है ना? आपने वैसे भी, आपकी पहले भी मैंने, मुझे पता है आपकी नजरों का शिकार मैं हो चुका हूं। कैसे? बिल्कुल आपके बेटे की तरह हूं, और आप की गली मोहल्ले से जब भी मैं गुजरता था या हूं, तो आपकी वो जो शिकरे वाली आंखें हैं, जो बाज की तरह आप नजर रखती हैं ना मुझ पे, तो वो मुझे बड़ा अलर्ट रहना पड़ता था। खैर, अब नहीं रहता हूं इतना अलर्ट, आपको डर नहीं है, क्योंकि अब छोड़ दिए हमने वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। तो खैर, अभी भी आपकी नजरों की दहशत हम पे बड़ी है, और अभी आप कहती हैं आंख का तो ऑपरेशन करा लिया, अब तो बिल्कुल आर पार नजर आता है काशिफ। क्या बात है जी। और अभी आप दोबारा से हमें कॉल कर रही हैं, और पता नहीं आप मेरी सख्ती आएगी या मुझे थापड़ा मिलेगा, शाबाश मिलेगी। तो ये गाना आने वाला दोबारा से आंटी दीपा के नाम, दोबारा से ये गाना हमारे शकील भाई बरली से। आज आप सब बड़ी बातों कर रहे हैं जनाब ओफेयर, और हमारा गला खुशक हो रहा है बार बार। इससे पहले कि ज़्यादा खुशक हो जाए, हम पानी का एक बड़ा सा कोट भरेंगे, लेकिन ये गाना आपको लेके जाएगा जनाब आपकी यादों में, किसी की मीठी मीठी बातों में। जी हाँ जनाब, वो बातें जो किसी ने आपके साथ की थी, मीठी मीठी बातों में, वो जो जाग के गुजारी आपने लम्बी लम्बी उन दिन और रातों में, आपको ये गीत लेके जाएगा। इसके बोल जनाब आपके दिल के आर पार छलनी हो जाएगा आपका दिल, मजीद गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि गाना अगर सुनेंगे तो छलनी तो होगा दिल जनाब, करें तो करें क्या। एक और कॉल आई सी, सानू की दी आई सी, की करा ते की ना करा, ठंडा पानी पी पी मरा। अली आराई भाई जनाब, आपकी कॉल आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा सरकार बच्चे यहाँ पे पैदा हो, आजकल की नस्ल हो या वो वाली नस्ल हो जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हो, आपने कहा बच्चे सारे अच्छे होते हैं, सिर्फ जदों ये वड्डे हो जाते ना तो फिर तुसी ना पूछो काशिफ जी, आ जड़े अपने मुंह मियां मिठू बनते ने ना, ये तो बंदे नू वेच के खा जान ते दूजे बंदे नू पता ना लगे, एडे शियार ने। ये आपने किसके बारे में कहा, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाएं। ना जी ना, हम बीच में नहीं आते इस बात के। बहरहाल एनीवेज जनाब, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं जो भी हों। ये खूबसूरत सा गीत जनाब आपको सुनवाते हैं, क्योंकि आपकी मीठी मीठी कॉल्स, आपकी मीठी मीठी बातें सुन के हमारा दिल कर रहा है कि आपको जोक मजीद सुनाया जाए जो बाकी रह गया। जारा ने कहा बार बार, शादीम भाई ने कहा बार बार कि जोक जनाब, फिर जोक पहुंचा था कि जब तीसरी क्लास में भी हम फर्स्ट आ गए तो डैडी ने कहा क्या चाहिए मेरे बेटे को, मेरे लाल को। मैंने कहा जी लाल को लाल शर्ट ले दें, हमें उन्होंने लाल शर्ट दिलवा दी। अब आ गया फोर्थ ईयर, बिल्कुल जनाब, उन्होंने कहा बेटा अब तो तुम मिडल में आ गए हो, पहले तीन साल तो थोड़ा सा बचपना था, अब अगर तुम फर्स्ट आके दिखाओ तो मानू, जो मांगोगे लेके दूंगा प्राइज। हमने भी जनाब चैलेंज ले लिया, मेहनत की, फोर्थ ईयर में फर्स्ट आए। डैडी ने पूछा अब एक बार फिर से बड़े फखर से, बेटा मांगो क्या मांगते हो प्राइज। हमने कहा डैडी लाल शर्ट ले दे एक। डैडी ने लाल शर्ट ले दी। अब जनाब ईयर फाइव आ गया, हमने खुद सोचा कि चार साल फर्स्ट आते रहे, पांचवें साल ना आए तो क्या होगा। डैडी भी इशारे इशारे में कहते रहे बेटा अब पता लगेगा। हमने बड़ी मेहनत की, फर्स्ट आ गए। डैडी ने पूछा एक बार फिर बेटा क्या प्राइज लोगे। हमने कहा डैडी लाल शर्ट ले दे।
6: जब जब
5: जो कभी जारी हो सारी है जनाब।

0: पर लगी हुई सोनी मनमोनी घड़ी पे 3:51 हो चुके हैं, 3:51 हो गए हैं। और बिल्कुल जी, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। समीना, आपकी आवाज सुन ली हमने और पूरा हफ्ता अब मेरा गुजर जाएगा किसी ना किसी तरह। और बहुत शुक्रिया अपनी मीठी सी आवाज और प्यारा सा दिलचस्प सा अंदाज हमें सुनवाने के लिए। आपने अंग्रेजी में कोई गिटपिट की है और उसका मतलब यही निकलता था कि आप का जो काम होता है ना संडे के दिन, आप हाउस जॉब्स कर रही होती हैं मेनली, और वो आपका काम छेती छेती हो जाता है हमारी बातें सुनते सुनते। यही मतलब था ना आपकी अंग्रेजी में जो आपने कहा। बरहाल मैंने दो और दो चार करके उसका तर्जमा ठीक किया है, ट्रांसलेशन। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही खुश अखलाक और खुश तबीयत हैं और हमारा मूड भी पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। समीना के बाद ऐसे ही शुरू होता है जनाब सामिया। सामिया बहुत ही ज़्यादा गौर से हमारी बातें सुनती हैं और समझती हैं और हमेशा हम जो है ना हमें सपोर्ट करती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, टिकटॉक पे जितने भी दोस्त मुझे इस वक्त मैसेजेस कर रहे हैं हमारे सोशल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन तो नहीं पाते हैं आप, सुनना तो आपको sunriseradio.fm के ज़रिए होगा, लेकिन जितने भी मेरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं वो भी मुझे मैसेजेस करते हैं शो सुनते सुनते, तो उनका भी शुक्रिया। हलीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी इंतज़ार करती हैं शो का हमेशा, ये गाना आपके लिए भी होगा। सामिया, आपने कहा छन्नों की आंख में एक नशा है। जनाब वो नशा हमें तो नहीं पता, हम देखेंगे तो ज़रूर हम आपको बताएंगे कि छन्नों की आंख में कितना नशा है। जनाब ये अली जफर साहब को कोई ये नशा लगा हुआ है, उनकी आवाज़ में उनको अंदाज़ा हो गया था कि छन्नों की आंख में कितना सारा नशा है। तो ये गाना उनकी आवाज़ में आज का क्लासिक हिट ऑफ द आवर होगा जनाब, जो जितने पुराने हम हैं उतने पुराने ये गाना आपके लिए लगा सकते हैं। बाकी 60s, 70s, 80s के गाने उनकी हमें इतनी समझ नहीं है तो वो हम ज़रा कम ही शामिल करते हैं। 90s के बाद के गीत होते हैं मेनली या लेटेस्ट गाने होते हैं हमारे शो में। और आंटी दीपा जी की कॉल आई जनाब, उन्होंने क्या कुछ कहा दोबारा, बल्कि क्या कुछ नहीं कहा, वो सब आपको बताएंगे नेक्स्ट आवर में। मज़ीद जनाब हमें सामिया ने कहा कि जोक प्लीज़ कंटिन्यू रखें, वो रखेंगे नेक्स्ट आवर में, मगर एक ब्रेक के बाद।
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30।
6: The classic flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है, हाँ जी, 4:06, यानी के 4:06।

खत्म हो गया आप सबका। गपशप करते करते आज की महफिल के लास्ट आवर में आन पहुंचे हैं और जना पता भी नहीं लगा। मुर्तजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आप बी रेडियो के काम से जॉब से आपका ताल्लुक रहा, अभी आप रिटायर हो चुके हैं और आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें। बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से आपके अंदाज से पता लगा आप बिल्कुल जनाब सीनियर हैं हमारे जितने भी साथी प्रेजेंटर्स इस वक्त जहां भी जिस भी रेडियो पे काम करते हैं दुनिया भर में जिस भी जुबान में जिस भी कम्युनिटी के लिए। जनाब हम सब की कोशिश होती है आपका दिल बहलाना और आपको हमारी बातों में जो भी महसूस हुआ जिस हद तक भी आपके दिल को लगी और आपको लगा कि मुझे कॉल करनी बनती है आपकी, ये आपका बड़ा पन है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहे हैं कि जो लेगेसी हमारे सीनियर्स हमारे लिए हमारे सुपुर्द जो जिम्मेदारी करके गए हैं उसको हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें अपने टूटे फूटे अंदाज में। या जितने भी हमारे साथी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं रब की मखलूक का दिल बहलाने का, हम भी उसमें उनकी तरह अच्छा तो नहीं लेकिन किसी न किसी तरह हिस्सा अपना डालें। आपके लिए वक्त निकालते हैं तो उसको कीमती बना दें आपके लिए। जनाब बातें हमारी हुई रऊफ भाई आपसे भी। अच्छा पहले सभी खवातीन की कॉल्स आ रही थी बहुत ज्यादा और अभी सब जो है ना मर्द हजरात की कॉल्स आई हैं हमें ढेर सारी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, छोटों बड़ों का, सबका, अपनों का। आपने दिल बहलाया, दिल लगाए रखा, हमारी हिम्मत बने रहे, हौसला बने रहे, वरना जनाब ये काम आसान नहीं है। बड़े बड़े मुश्किल काम जिंदगी में देखे होंगे आपने भी हमने भी, मगर आवाज अंदाज अल्फाज से बावबेद करना, उनको सही तरीके से अदा करना एक बारीक सी लकीर होती है। लख से कख हो जाता है, कख से लख हो जाता है, नुक्ते से मैरम से मुजरम हो जाता है बंदा। अगर जरा सी जुबान आपकी फिसली तो बड़ी बारीकी का काम होता है। बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई, आप इस बारीकी के काम के उस्ताद रहे हैं। आपने इस बंदा ना चीज को इस काबिल समझा, हौसला बढ़ाया, लेकिन सच बात है ये काम आसान नहीं है। एंटरटेन करने का, दूसरों को एक दायरे में रह के ये आसान नहीं है जनाब, समझने वाले समझ सकते हैं।

0: जनाब, होता है क्या आशिक, होता है क्या इश्क, उतरो कभी तुम तो होगी तुम्हें खबर। जनाब जबरदस्त जबरदस्त था गीत मुर्तजा भाई, आपने मजबूर किया हमें, आपकी बातों ने मजबूर किया, आपके खलूस इखलाक भरी बातों ने मजबूर किया हमें। अपना मनपसंद गीत जहन में आया और हमने नाम किया आपके और आप सब सुनने वालों के। तहमीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूछा काशिफ जी छन्नों की आंख में नशा है, ये आपको कैसे पता लगा? हाय हाय, बालो बत्तियां ते मारो सकूं संगला नाल, जनाब हमने कहा था पहले ही गाना लगाने से पहले कि छन्नों की आंख में जो नशा है वो अली जफर भाई ने देखा है और उस पे गाना बनाया था, गाया था। हमसे ये गलती हुई कि हमने सामिया के कहने पे वो गाना अभी लगाया था थोड़ी देर पहले। बाकी जनाब छन्नों की आंख में कितना नशा है वो हमें नहीं पता। आपने कहा कि छन्नों की आंख में कोई नशा नहीं है इन दिनों में, क्योंकि छन्नों का हाल बुरा है गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी पड़ी है पिछले दिनों में तो कोई नशा नहीं है छन्नों की आंख में। बहुत शुक्रिया तमीना जी, आपने छन्नों की आंख के बारे में हमें बताया, हमारे इल्म में इजाफा किया हमने, आपने, हमने क्या करना है। जो करना है अब आप ही ने करना है। बहुत बहुत शुक्रिया छन्नो तमीना जी, छन्नो जी, तमीना जी, आने वाला गाना आपके नाम। और ड्राइव कर रही है, ड्राइव केयरफुली। मुझे फिक्र हो रही है जिस तरह से आपने हमसे गुम सुम होके बात की, साथ में ड्राइव कर रही थी, कहीं आप रास्ता ना भटक जाए, हमारी वजह से कोई रास्ता ना भटकीएगा, कोई भी ना भटके जनाब, हमारी जिम्मेदारी कोई भी नहीं है, समझ गए ना। हाँ अपने रास्ते पे रहिएगा, बातों को एंजॉय करें। और हलीमा आपने गाने की फरमाइश कर रखी थी, आपने दो एक गाना बताया था, आंखों में नींदे ना दिल में करार। अच्छा आंखों के गाने, कभी छन्नू की आंख का मसला है, कभी हलीमा जी की आंखों में नींदे ना दिल में करार है, कभी दीबा आंटी ने आंखों का ऑपरेशन करा लिया है, रोला की पै गया। सब खवातीन जो है ना वो आंखों की बातें कर रही हैं, क्या मसला है? थोड़ी सी गर्मी पड़ी है अभी पिछले हफ्ते यूके यूरोप में और आपकी आंखों के मसले चल निकले हैं। काला चश्मा डाला करें हर वक्त, रात को सोते में भी पहना करें, मैं तो कहता हूं। जनाब अलीमा ने गाना दूसरा जो हमें चॉइस दी है वो है दिल मूवी का गाना। उन्होंने कहा है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। आप सब में से कोई तो जाए, जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां उनका दिल खो गया। जनाब ये गाना हमने क्यों कर दिया आपके लिए लगाते हैं थोड़ी सी देर में। और जनाब जोक चल रहा है कि वो अभी टू बी कंटिन्यूड था और वो जाते जाते हम आपको बताएंगे। नहीं ऐसे नहीं बताएंगे ना, उससे पहले आपको कुछ पैगामात सुनने होंगे। जनाब सुनिएगा ये पैगामात आपके लिए और उसके बाद फिर आते हैं वापस मूवी दिल है और मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हलीमा जी ने कहा है कि गाना लगा दें, मुझे बड़े मज़े की नींद आती है, बड़े चैन की नींद आती है। आप भी बता सकते हैं कि आपको नींद कैसी आती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: Oh नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: Big things are happening at Sunrise Radio.
4: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
3: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
4: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
1: Thank you for making Sunrise Radio your favourite Asian radio station.

जी जनाब, जोक भी कंटिन्यू रखना है। आवाम की कॉल आ रही है। खान साहिब, अभी हमें किसी की नींद, किसी का चैन गवाचा है, वो ढूंढने दें। फिर वो ढूंढने के बाद हम भीड़ में जाएंगे, तन्हाई में भी जाएंगे। इस गाने के बाद भीड़ में और तन्हाई में हमें जाना होगा जनाब, क्योंकि खान साहब ने दो बार कॉल किया और उन्होंने कहा है कि सरकार साडा गाना कितने चला गया। मैं कह जनाब गाना आपका यही है, भीड़ में और तन्हाई में। लेकिन पहले जिनकी नींदें हराम हो गई हैं, जिनका चैन खो गया है, वो तो ढूंढने में उनकी मदद करनी पड़ेगी जनाब। हलीमा ने कहा जोक मुकम्मल करें। चलो, जोक यहां तक पहुंचा था कि हमने पांचवीं क्लास में भी प्राइज लिया और अब हम चले गए लाल शर्ट प्राइज में। डैडी को फरमाइश, डैडी ने ले दी जनाब। छठी क्लास में आगे सिक्स्थ, जब हम सिक्स्थ में आए तो डैडी ने कहा बेटा जी इस साल नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं भी बड़ी मेहनत की मैंने अपने टाइम में और मैं पोजीशन नहीं ले सका, क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाया, बड़े दावे थे मेरे, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। हमने भी जनाब दिल पे ले ली बात और बड़ी मेहनत की, रात दिन एक किया और छठी क्लास में आगे फर्स्ट। और डैडी खुशी के मारे बिल्कुल जनाब मेरी तरह हो गए, यानी के बावले हो गए, चले हो गए। उन्होंने कहा बेटा आज मांगो, फिर क्या मांगते हो प्राइज। हमने कहा डैडी एक लाल शर्ट ले दे। डैडी ने लाल शर्ट ले दी जनाब। अब सातवीं क्लास में हम आ गए। सातवीं क्लास में डैडी ने कहा बेटा इस बार तो सारी बरादरी आंख लगा के बैठी है कि काशिफ ने हमेशा फर्स्ट पोजीशन लिया, सातवीं में पोजीशन पहली लेगा तो मानेंगे हमारे बच्चों से ज्यादा होशियार है काशिफ। मैंने भी कहा जनाब अब तो डैडी ने बरादरी वालों का दे दिया वास्ता, अब तो हमारी डैडी की इज्जत पे आ गई है, हमने दिन रात एक कर दी, हमारे इम्तिहान हुए, फाइनल एग्जाम हुआ, पोजीशन आई हमारी हमेशा की तरह, हम क्लास में फर्स्ट आए। डैडी ने जनाब फखर से कहा बेटा तुमने मुझे आज तुम पे बड़ा फखर है, मांगो क्या मांगते हो। मैंने कहा डैडी एक लाल शर्ट दिलवा दे। जनाब हम आ गए आठवीं क्लास में और आठवीं क्लास में क्या हुआ ये सुनने वाली बात है। तो जोक अभी जारी है जनाब हमारा। फंस गई जान शिकंजे अंदर।

जी जनाब, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जी उसके बिना जिसने किया मेरा दिल किल है, बिल्कुल किल कर दिया। कोई जाए तो जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां खो गया। और जनाब, खो जाता है बंदा जब भीड़ होती है, भीड़ में बहुत कुछ खो जाता है। ये तो दिल है, दिल तो होता ही इतना कीमती है। दिल तो जनाब भीड़ में बंदा ना भी हो, तन्हाई में भी हो, तो दिल चुराने वाले जनाब इस कीमती शय को खिलौना समझ के, इस दिल के साथ खेलने के लिए कुछ लोगों के शौक जर्फ, फितरत बड़ी निराली होती है, उनका शौक होता है महंगे महंगे खिलौनों से खेलने का। और वो जनाब किसी के दिल से भी खेल जाते हैं खिलौना समझ के, शौक शौक की बात है। उनका शौक, उनका दिल बहल गया और हमारा दिल भी हमारा ना रहा। खान साहिब, चलते हैं भीड़ में, ढूंढते हैं कि मसला क्या है आपके साथ, क्यों आप भीड़ में मारे मारे फिरते हैं और फिर भी तन्हाई का शिकार है भीड़ में भी, ऐसा कैसे होता है। गानों की फरमाइशें ढेर सारी हैं, टाइम इतना नहीं है। जरीना जी के नाम ये गाना करते हैं, जिन्होंने हमें एक बात में उलझा दिया है। उन्होंने जनाब सलाम का जवाब देते साथ ही कहा, काशिफ जी तुसा सादे नहीं हो। मैंने कहा ये क्या बात हुई। कहती है मैंने आपको बताने के लिए कॉल की है कि तुसा सादे नहीं हो, तुसा बड़े होशियार हो। मैंने कहा ये आपकी गलत फहमी हो सकती है, मैं तो कहता हूं मेरे से ज्यादा सादा कोई है ही नहीं। सारे कहते हैं आप अकेली मुझे होशियार कहती हैं, गलत फहमी भी होती है ना बंदे को। आप कहती हैं जी आलू गोश्त बना रही हूं काशिफ। सोनिया कहती है काशिफ दो बातों की वजह से मेरा सब्र जवाब दे गया है। मैंने कहा वो दो बातें कौन सी हैं। कहती है एक आपका जोक सुन रही हूं कब मुकम्मल होगा, और दूसरा मैंने गाना कहा था दिल का आलम, कुमार सानू जी का एक भी गाना आज आपने नहीं लगाया। नहीं लगाया, आप लड़ाई पे आ गए जनाब। सब्र का आलम नहीं, दिल का आलम। आपके लिए

0: music.
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
3: Kullo nafsin zaikatul maut.
4: Muslim funeral service mein kafan dafan phoolon ka intezam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
5: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: जनाब ये गीत होगा आप सब सुनने वालों के नाम भी और खास तौर पे जिन्होंने हमें कहा कि हमने एक भी कुमार सानू जी का गाना आज नहीं लगाया. मुझे नहीं लगता, बिग फैन ऑफ कुमार सानू एंड 90 सॉन्ग, उदित नारायण, अलका याग्निक एंड मैनी मैनी अदर ग्रेट सिंगर्स ऑफ 90s. बहरहाल आपने कहे, अब ख्वातीन को कौन कह सकता है कि आप गलत कह रही हैं, या ख्वातीन से बहस कोई अक्लमंद मर्द तो कर ही नहीं सकता, मेरे जैसा सादा बंदा ही कर सकता है. तो आपने कहा कि हमने एक भी गाना नहीं लगाया इससे पहले कुमार सानू जी का, तो आपने ठीक ही कहा. तो जनाब सबर का दिल का आपने कहा मेरा सबर ख़त्म हो गया है. तो जनाब जोक हमारा जारी और सारी था, जोक हमने मुकाना है इससे पहले कि हमारा शो का टाइम मुक जाए. तो जनाब 8th क्लास में हमने मेहनत की, हम आ गए 9th क्लास में. 9th क्लास में हमने ली हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन. डैडी ने कहा मेरा सीना चौड़ा कर दिया मेरे बेटे ने, बताओ बेटा क्या लोगे प्राइज में, इनाम क्या दूं तुम्हें. मैंने कहा डैडी एक लाल शर्ट ले दे. डैडी ने लाल शर्ट ले दी जनाब. फिर हम आए 10th क्लास में. डैडी ने कहा बेटा अब तुम कॉलेज में जाओगे, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, स्कूल में अपना नाम रोशन कर दो जैसे हमेशा किया. हमने जनाब 10th क्लास में ली पहली पोजीशन. डैडी ने कहा बेटा अब तो बताओ कोई खास इनाम क्या चाहिए कॉलेज जाने से पहले. हमने कहा डैडी एक लाल शर्ट ले दें. डैडी ने लाल शर्ट ले दी. आगे हम कॉलेज में, फर्स्ट ईयर इन कॉलेज. डैडी ने कहा बेटा वो स्कूल था, अब तो कॉलेज है मेरी जान. कैसे स्कूल में और बातें थी, ये कॉलेज है, यहाँ की पढ़ाई और होती है. ओ मेरे लाडले, ओ मेरी आंखों के तारे, ओ मेरे सोने मोने. कॉलेज में पहले साल में पोजीशन लेके दिखाओ, फर्स्ट आके दिखाओ तो मानो. डैडी का शक मेरे पे ठीक निकला, जैसे आप सब भी मुझ पे वहम और शक करते हैं ना, राज की बात है आप सबका शक ठीक है, आप गलत शक नहीं करते मेरे पे.

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, हमारे सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं टाइम हो चुका है 4:41। और जनाब घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, बच्चों की, आपसे दूर जाके आपके पास आपके दिल में रहने की घड़ी आन पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया आपका, शुक्रिया आंटी दीपा जी आपका, शुक्रिया जरीना जी आपका, शुक्रिया जारा आपका, शुक्रिया रऊफ भाई आपका, शकील भाई बरली से आपका शुक्रिया, सिकंदर भाई आपका शुक्रिया, खान साहिब दो बार आपने कॉल की, गाने का शुक्रिया भी किया, खुदा हाफिज भी कहने के लिए कॉल की, आपका शुक्रिया। शादी हुसैन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारे भाई आपने भी साथ निभाया। अली अराई भाई आपका शुक्रिया, हमेशा हमेशा आप हमारा साथ बनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेमीना जी आपका शुक्रिया, और नायला आपका शुक्रिया। जी भाई जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा हमें देख के हॉर्न आप बजाएंगी तो हम बिल्कुल आपकी तरफ देखेंगे, नाराज मत होइएगा। बल्कि आज मैं बाहर जाऊंगा तो मैं चिट्टी गाड़ी जिसकी भी देखूंगा मैं उधर बिल्कुल टिक टिकी बांध के देखूंगा, जिसकी भी चिट्टी गाड़ी होगी हॉर्न बजाए या ना बजाए जनाब मैं ध्यान रखूंगा। गलती की गुस्ताखी की माजरत कि आपने हॉर्न बजाए 2-3-4 बार और हमने नहीं देखा आपकी तरफ, बाकी सब ने देखा, आपको अच्छा नहीं लगा। ये अगर सुन रही हैं अभी भी तो ज़रूर आप मुस्कुरा रही होंगी। शमस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, कोई नाम रह ना जाए। जब्बार साहिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ी प्यारी बातें की थी। सैमी है जनाब और हलीमा है, आपका दोनों का भी शुक्रिया, और इसके अलावा समीना है एक, उनका शुक्रिया, और एक सैम है, एक समीना है वो घर का काम करती रहती है हमें सुनते सुनते, और एक सैम है वो ड्राइव करते हुए हमें सुनती रहती हैं, और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जी छन्नों की आंख में किसका नशा है क्या है वो नेक्स्ट शो में हमें ज़रूर बताएंगी। वादा हो गया आपका और हमारा। और एक बार फिर से महक तारक, मरियम तारक और ज़ैर तारक को हैप्पी बर्थडे। उम्मे हानी अयूब की तरफ से, आंटी दीवा जी की तरफ से और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, खास तौर से क्यूट म्यूट से ज़ैर तारक को बहुत सारी बर्थडे की बेस्ट विशेज। और अगर आपकी बर्थडे है आज या कोई स्पेशल डे है इस वीक में आपका, तो हमारी पूरी सनराइज रेडियो की टीम आपके लिए बेस्ट विशेज आपके लिए रखती है, बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं।

0: और अगर किसी का नाम रह गया तो जनाब मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है कि पढ़ने के काबिल नहीं है जनाब, हम तो इसलिए किसी को डर के मारे खत भी नहीं लिखा था, क्योंकि अगर किसी का इम्प्रेशन बना हुआ अच्छा हमारे लिए तो खत पढ़ के बिल्कुल ही जवाब हो जाएगा, इसलिए जनाब हमने खत भी कभी किसी को नहीं लिखा, ना डैडी को, ना मम्मी को, ना किसी और को। देखा कैसे बच के निकल गए हम जनाब, निकलना पड़ता ना बच के जनाब, हालात ऐसे हैं, जमाना बड़ा सियाना है, कहाँ का कहाँ हमारी बातों को ले जाए, इसलिए बातों की वजाहत जरूरी होती है जनाब। ये मीठी मीठी बेतुकी सी बातें थी आपके लिए, क्योंकि आप बड़े खास हैं हमारे लिए, सभी दोस्तों का जिन्होंने कॉल्स नहीं भी की और अपना ध्यान हमारी तरफ रखा, आपका नहीं आपके ध्यान का शुक्रिया, सदके जाऊं। मेरा सदका लगेगा नहीं लेकिन ऐसा, हाँ दान तो मेरे पूरे हैं लेकिन फिर भी जनाब मेरा सदका नहीं लगेगा, फिर भी मैं सदके जाऊं, बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं आप सबके बारी। घड़ियान पहुंची जुदाइयों पे छोड़ूं कि आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने घड़ियान पहुंची, अपनी यादों बातों चाहतों और सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत एक बार फिर से होगी आपके साथ नेक्स्ट संडे। तब तक अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका, अल्लाह निगेवान।
1: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: नफसेन जायका तुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो की महंगाई, चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

सितारा, एक सितारा एक कली को मैं ककतरा, एक

लाओगे लाओगे ला।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: the hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुए थी।
5: खान
6: हम शरीफ क्या हुए
5: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
5: देखो मैं हूँ कहाँ
0: खान

0: Right, that was a wonderful tune and that was a hit of the hour. और आपने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunrise Radio clock, it's 14 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. और यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक करनी है. ब्रेक के फौरन बाद गीत आने वाला है सबके लिए होगा, जो हमें याद कर रहे हैं और लाइनें चमक रही हैं, दमक रही हैं. और ये देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन दिल भाग भाग हो गया. और जिन्होंने हमें मिस किया उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ और दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. वाओ, व्हाट अ अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग आई हैव टुडे एंड व्हाट अ वंडरफुल डे हैज बीन. और क्या कहेंगे, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है सबकी. और जो भी हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया. फिर ड्राइव इन एंड ड्राइव विद द केयर एंड फील आउट एंड अबाउट स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो ऑन 103.2 FM. और यहाँ पे निकी जी ब्रेक.
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है. खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है. महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल. बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल. अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे. किचन विच सारा सामान मकिया पिया है. आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है.
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतों ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे.
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका भी. और आज हमारे सबसे पहली कॉल आई है और बहुत बहुत शुक्रिया राजा शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वेलकम जी अनु, खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह कहूँगा, आपको भी वेलकम जी अनु और ईद मुबारक जी यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और हमें अच्छा लगा कि ये आप हमारा साथ दे रहे हैं. अतीक साहब हैं ऑल द वे मैनचेस्टर, आपको भी ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. और सोनी जी हैं ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत अच्छा लगा कि आपने भी हमें मिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और थोड़ी देर के बाद गीत होगा आपके लिए. वाजिब भाई हैं हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. नशीन साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. जो विद हेल्थ नंबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. और यहाँ भी हमने पेश करना है गीत, पेश करेंगे सबके लिए. और जो मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. अतिक साहब हमारे दोबारा फ्लश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई. सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. चौधरी फरियाद साहब हैं पाकिस्तान से, हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सबके लिए ये गीत होगा वंडरफुल ट्रैक कमिंग फ्रॉम मी टू यू एंड यू टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स. और ये वो खूबसूरत गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, सब सुनने वालों के लिए होगा और हमारी तरफ से भी, क्योंकि आम खुद अभी भी ईद मना रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना वाजिद भाई आपके लिए और आपकी पूरी दोस्त जो है, दोस्त अहबाब हैं, अजीज हैं, उनके लिए, आपकी फैमिली के लिए होगा गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है. वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, एंजॉय.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जो भी मेरे साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे मोहतरम भाई दोस्त शबरेज भाई, आपको भी मुबारक ढेर की मुबारक, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गई, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और आपकी पूरी फैमिली के लिए, और जो भी आपके दोस्त बाबा अजीज़ हैं उनके लिए गीत होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी मुझे इन्वाइट किया था, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। और किसी और रोज़ आपसे मुलाकात होगी मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बर्मिंघम में हमारा प्रोग्राम सुनिए मेरी प्यारी बहना है, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहतरम भाई हैं, गुरु जी हैं, और हमारी पापी जान हैं, सुमित्रा जी हैं, और गिदन भाई हैं। गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है आप सब दोस्तों के लिए, और ये आपने इन्जॉय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इन्जॉय द ट्रैक।

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया शुभरेश भाई, that was for you और हमारी प्यारी बहना है सोनिया जी all the way from Birmingham, आपके लिए था और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप न्यू कैसल में हमारा प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। नदीम मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर यू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक लाइन ऑफ फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और आज कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग एंड सच हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड सच अ ब्यूटीफुल वेदर हैज बीन सच अ अमेजिंग वेदर, बिलीव यू नो हैज बीन वंडरफुल वंडरफुल वीक एंड हैज बीन एंड आई बिलीव टुमारो माइट बी रेनिंग, यू नेवर नो एज वेल एंड यू नो दिस ब्रिटिश वेदर एज वेल, दैट्स व्हाई इज ऑल अबाउट व्हाटएवर इट इज गोना बी। हमेशा मैं कहता हूँ दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030. That's Bradford 723030.
0: Right, moving on to another beautiful track. This track is going to be played for Simi ji. Bobo shukriya aapka bhi, aap hamara saath hain, thank you very much. Aane wala geet aapke liye ho gaya aur aapki puri family ke liye ho gaya. I hope you're going to enjoy this wonderful tune. Shweb bhai, ye geet aapke liye bhi hoga aur Rekha ji, ye geet aapke liye bhi hoga. Nadeem Mansoor sahab, aapke liye ho gaya. Atika sahib hain, ye geet aapke liye bhi hoga. Sonia ji hain, ye geet aapke liye ho gaya. Geeta ji hain, ye geet aapke liye ho gaya. Shabrez, mere mohtaram, mere bhai, ye geet aapke liye ho gaya. And I hope you're going to enjoy this wonderful, wonderful tune. बड़ा ही खूबसूरत गीत है, आप सब दोस्तों के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और ख्याल रखना मेरे भाई, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। शबरेश भाई, ये गीत आपके लिए, एंजॉय द ट्रैक।

Right, and that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, and that for was for you और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आने वाला गीत है Danish, this next track is gonna go out to you और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे, and thank you very much for your lovely call as well. Azara, this next track is gonna go out to you as well, and you drive very very carefully. And I was driving back from Manchester today, और क्या कहने जी, what a beautiful place has been, what a beautiful journey. And you know what, I was listening to this track and I thought, you know what, definitely I'm gonna play for you as well. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शाहपली जी ये गीत आपके लिए भी होगा, और नशीन साहब ये गीत आपके लिए, फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है. और सोनी जी फ्रॉम बर्मिंघम ये गीत आपके लिए होगा, आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल ट्यून. नदीम मंसूर साहब, अतिका साहिबा ये गीत आपके लिए होगा, सिमी जी ये गीत आपके लिए होगा, एन्जॉय द ट्रैक.

0: Right, that was one of my favorite tune, और आपने enjoy किया definitely. और यहाँ भी हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 45 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे. ब्रेक के फौरन बाद I'm going to be playing for you one of my favorite tune. बड़े दिनों के बाद ये मैं गाना पेश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करें. सब सुनने वालों के लिए होगा, जो आ चुके हैं उनके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए, जो मेरा साथ दे रहे हैं, और नॉट फॉरगेट ऑल द चोरी छुपके लिसनर्स वेल, और आपके लिए होगा. अब्दुल, इफ यू ड्राइव इन एंड ड्राइव विद खैर. ज़ारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज वेल. और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

Right, that was a wonderful tune. I'm moving on to another beautiful track because I need to squeeze in a couple of tracks before I go on to the news break. और सोनी जी ये गीत आपके लिए गया. I hope you gonna enjoy this wonderful tune. रेखा जी ये गीत आपके लिए भी होगा. और someone very very special to someone very very special ये गीत आपके लिए भी गया. I hope you gonna enjoy this wonderful tune. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप enjoy करेंगे. Wonderful tune. मदरसा कियानी साहब आपके लिए और आपकी दोस्तों के लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप enjoy करेंगे. और डॉक्टर मालिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज़ वेल. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं. मुझे उम्मीद है यकीन है आप एंजॉय करेंगे.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है, दिस ट्रक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़। चौधरी फयाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कब इंजॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी मुजफ्फर साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, तारिक जुल्फी साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कब इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँ वाजिद भाई आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए होगा और सब सुनने वालों के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कब सब एंजॉय करेंगे।

0: right, welcome back, listeners. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM and 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes. Our program is coming very, very soon. We will be hearing on Derby, Midlands, inshallah, jal aur bahut hi jaldi hoga, aur definitely bahut hi jaldi aane wale dinon mein ho jayega. Kya hai ye bhi ek khushkhabri hai, aur hamare kabutar ne hame bataya hai ki bahut jaldi hone wala hai. Wah ji wah, kya kehne. Aur yahan pe humne kya karna hai ki live call ka silsila hai, aur hamari ghadi jo na keh rahi hai ki kyunki 1 minute reh gaya hai, to aapne 8 break karni hai. 8 break ke baad fir aapne silsila shuru karna hai. Kya karun, kya karun, main kiske sunun, main kya computer ke sunun, ya main apni sunun, ya main apni karun, main kya karun. Anyway, not too worry, kyunki yahan pe hame choti si break hogi, aur 1 minute ke baad aur then aram se humne program karna hai. Aur yahi wo khoobsurti hai is program mein, sab aa rahe hain apne hain, aur ye sajnon ki mehfil hai, sajan aa rahe hain, aur body ki family ko jiyen kehte hain, khushamdeed kehte hain, sad bismillah kehte hain, aur sab sunne walon ka bahut bahut shukriya ki aapne hamare liye time nikal ke phone karte hain aur zafzai karte hain. Valuable time you are giving to me as well, wo bahut bahut hi khoobsurat hai, kyunki ek tohfa mujhe de rahe hain, aur zindagi ka ek tohfa mujhe de rahe hain, wo hai kya hai, time hai, aur wo jo keemti waqt hai wo jo mujhe de rahe hain, bahut bahut shukriya aap sab ka bhi. Aur kyunki hamara abhi aaj break aane wali hai, aaj break ke baad humne ye silsila shuru karna hai, aur fir kya karenge ki aaram se karenge. Aur yahan pe kyunki jo hamare jo committee ji na, ye mere hal kho gaya hai, isko main jaga raha hu, computer ko jaga raha hu ki aap jaage. Kyun nahi jaag rahe mere bhai, kya wajah hai? Aur ye kho gaya hai bechara. Aur yahan pe humne kya karna hai ki choti si break karni hai. Break ke foran baad mujhe kehta hai ki isko jagaye, aur computer ji mujhe khud keh raha hai ki mujhe jagaye. Maine kaha wah ji wah, kya kehne ji, ye dekho ye technology, isko kehte hain technology, aur ye khud mujhe keh raha hai ki mujhe jagaye. Wah ji wah, mere khayal mein pura hafta ho gaya ye kho raha hai. Aur anyway, not to worry, yahan pe choti si break karenge. Keep it locked with Sunrise Radio. Sunrise and music.
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है. खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है. महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल. बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल. अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे. किचन विच सारा सामान मकिया पिया है. आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है.
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ. उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे.
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने. नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुनराइ रेडियो, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा आपसे लेके 11 o'clock तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमारा साथ देने तिकर साहिब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: आप ठीक ठाक? सही ठीक है आपकी?
1: आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुन के
1: आप ठीक हैं।
0: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र करम करम, उस मौला का करम है।
1: ये आपके सॉन्ग से लग रहा था कि ईद है।
0: ईद वाकई ईद है, वाकई ईद है, क्या कहने।
1: ईद गुजर तो गई लेकिन फिर भी आज रेडियो पे तो आज ईद लग रही
0: है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जब भी मुलाकात होती है और सबके सुनने वालों के साथ ईद होती है, क्या कहने। जी
1: जी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग थे
0: जी,
1: और हमेशा की तरह। और वाकई घर में मैंने उनकी आवाज से रेडियो लगाया हुआ था।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: मैंने कहा ये तो आज ईद ही लग रही है।
0: मैंने सोचा यहाँ पे तरक्की होगी, जब मैंने आपको हेलो किया ना यहाँ पे मैं लाइव कॉल में, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी गानों की, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो ना वो पीछे से आवाज़ वो सिस्टम ठीक हो गया, तो इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा वाह वाह वाह, क्या कहने जी, हमारी तरक्की होगी जी, वाह जी वाह, क्या कहने। फिर आपने मुझे बताया तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: जी थैंक यू आपका
0: जी।
1: तो सब रंगे महफिल के तमाम सितारे और चांद को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और ये ईद का चांद तो आज ही है,
0: क्या
1: तो इसलिए सबको ईद मुबारक
0: जी। आपको भी, आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को
1: आज मुबारक
0: जी। माशाल्लाह
1: तो बहुत अच्छा लगा ईद पे भी, और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और इंशाल्लाह सब लोग आएंगे
0: जी।
1: और जैसे हमारी सखी सहेलियाँ हैं
0: जी जी,
1: सुमित्रा जी और गीजर भाई
0: जी,
1: वो सबसे पहले तो उनको नमस्ते कहते हैं। उनके भी बहुत सारे मैसेज ईद पे आते रहे, उनका बहुत शुक्रिया।
0: वाह जी वाह।
1: लेकिन आज उनका कोई मैसेज नहीं आया।
0: आज वो एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, और क्या कहने, वो माशाल्लाह आज एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने हमें माशाल्लाह फोन किया है और वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी।
1: चलें अल्लाह पाक उन्हें खैरियत से रखे, और खैरियत से इंशाल्लाह फिर आएंगे और शिरकत करेंगे अगर वो हॉलीडे पे हैं तो। अल्लाह पाक अच्छा रखे सबको। और गीजर भाई हैं और रेखा जी हैं और सलीना जी हैं और सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल जी हैं और चौधरी फरियाज साहब हैं, वो आएंगे और ईद के लिए कोई धमाल करेंगे।
0: धमाल आज गाना गाएंगे, क्या कहने, आज फरमाइश है गाने की जी।
1: नहीं आज तो उनको गाना पड़ेगा क्योंकि ईद है ना।
0: ईद हाँ वाकई सही है जी।
1: तो नशीन जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं, जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, वो ईद के लिए जरूर कुछ ना कुछ कोई।
0: वो हमारा साथ दे रहे हैं और उनका क्या कहना जी, आज तो दो तीन गाने गाए गुनगुनाएंगे, क्या कहना उनका। वाह जी वाह,
1: आज तो वो ईद
0: जी, ईद की खुशियाँ दबाला करेंगे ना जी,
1: दबाला करेंगे,
0: दबाला करेंगे, और क्यों ना जी।
1: पापा जी हैं और शकील जी हैं, वो भी खूबसूरत ईद के मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा सुनाते हैं, आज भी सुनाएंगे
0: जी जी।
1: सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, वो उनकी खूबसूरत शायरी सुनने को मिलेगी। और सजाद साहब हैं, साजिद पहलवान साहब हैं, वाजिद भाई हैं, फिर इमरान साहब हैं, और महबूब इलाही साहब का हम इंतजार करेंगे, वो भी ईद पे कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे
0: जी।
1: और तारिक भट्ट साहब हैं, और राना नवीद साहब को बहुत देर हो गई है, ईद तो गुजर गई लेकिन ईद के लिए वो उनकी शायरी बहुत खूबसूरत होती है, वो भी आए और जरूर इसमें हिस्सा भी लें और सुनाएं भी, खूबसूरत शायरी सब सुनेंगे
0: जी।
1: आसफ रियासत साहब हैं और चौधरी रुखसार साहब, वो भी ईद पे ईद के लिए ही कुछ खूबसूरत शायरी हमें सुनाएं
0: जी।
1: हम भी इंतजार करेंगे और इंतजार उनका होगा राव अजहर हुसैन जी,
0: राय अजहर हुसैन साहब, माशाल्लाह वो आएंगे इंशाल्लाह, वो आज डेफिनेटली आएंगे इंशाल्लाह।
1: उनकी खूबसूरत बातें और खूबसूरत शायरी भी सुनने को मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है
0: जी। वाह जी वाह।
1: चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, उनको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो थोड़ी शायरी है
0: जी जी। अरशाद अरशाद अरशाद जी जी।
1: फिर दिल को रोजो शब की वही ईद चाहिए।
0: वाह।
1: फिर दिल को रोजो शब की वही ईद चाहिए।
0: वाह।
1: टूटे तलोकात की तजदीद चाहिए।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: टूटे तलोकात की तजदीद चाहिए।
0: वाह।
1: खाली नहीं है एक भी बिस्तर मकान में।
0: वाह जी वाह।
1: एक ख्वाब देखने के लिए नींद चाहिए।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: एक ख्वाब देखने के लिए नींद चाहिए।
0: वाह।
1: हम मांगते रहे तेरे रुखसारो लब की खैर। हम मांगते रहे तेरे रुखसारो लब की खैर,
0: वाह वाह,
1: ऐ साहिबे जमाल तेरी दीद चाहिए,
0: वाह जी वाह,
1: ऐ साहिबे जमाल तेरी दीद चाहिए, हमको तो एक रफाकत आशफ्ता सर बहुत,
0: वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने,
1: हजूम राह की ताईद चाहिए,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: हर आस्तीन के खून ने कातिल बता दिए, हर आस्तीन के खून ने कातिल बता दिए,
0: वाह,
1: शहरे सितम को जुल्म की तरदीद चाहिए,
0: वाह वाह वाह,
1: हम पर जमीन के रास तो सब मनकशफ हुए, अब आसमां के होने की तमहीद चाहिए,
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब,
1: फिर दिल को रोजो शब की वहीद चाहिए,
0: वाह वाह,
1: टूटे तलोकात की तजदीद चाहिए, ए वक्त जरा थम जा ये कैसी रवानी है,
0: वाह,
1: आंखों में अभी बाकी एक ख्वाब जवानी
0: है, वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब,
1: आंखों में अभी बाकी एक ख्वाब जवानी है, क्या किस्सा सुनाए हम इस उम्र की, इस उम्र गरेजा का,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: फुर्सत है बहुत थोड़ी और लंबी कहानी है, एक राज है सीने में रखा नहीं जाता अब,
0: वाह,
1: आकर कभी सुन जाओ एक बात पुरानी है,
0: बहुत खूब बहुत खूब, वाह,
1: सच्चे थे तेरे वादे सच्चे हैं बहाने भी, सच्चे थे तेरे वादे सच्चे हैं बहाने भी,
0: वाह,
1: बस हमको शिकायत की आदत ही पुरानी है, जो कुछ भी कहा तुमने तुमको ही खबर होगी,
0: वाह,
1: हमने तो सुना जो कुछ दुनिया की जबानी है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ए वक्त जरा थम जा ये कैसी रवानी है,
0: वाह जी वाह, बहुत खूब,
1: आंखों में अभी बाकी एक ख्वाब जवानी है, लफ्जों के जाल बुनने से अब क्या हासिल होगा,
0: वाह,
1: जब वो खामोशी ही ना पढ़ सके तो बयां क्या होगा,
0: होगा, वाह जी वाह, बहुत खूब,
1: हमने तो सलीके से जलाकर दिल अपना रख दिया, हमने तो सलीके से जलाकर दिल अपना रख दिया,
0: वाह,
1: अब इसे रोशनी कहो या तमाशा ये तो जरफे जहां होगा, हमारे सब्र की सरहद न पूछे दोस्त,
0: वाह,
1: हमारे सब्र की सरहद न पूछे दोस्त,
0: वाह,
1: हमने मुस्कुरा कर इसे अलविदा कहा जिसे हम मांगते थे, अब कैसे बताएं कि कितने कर्ब से गुजरे हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: अब कैसे बताएं कि कितने कर्ब से गुजरे हैं, हम वो चिराग हैं जो तंद हवाओं में भी नहीं बुझे,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: लफ्जों के जाल बनने से अब क्या हासिल होगा, जब वो खामोशी ही ना पढ़ सके तो बयां क्या,
0: क्या होगा, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब,
1: जितने अब थे जितने अपने थे सब पर आए थे, हम हवा को गले लगाए थे,
0: वाह,
1: जितने अपने थे सब पर आए थे,
0: वाह,
1: हम हवा को गले लगाए थे, जितनी कस्में थी सब थी शर्मिंदा,
0: वाह,
1: जितने वादे थे सर झुकाए थे,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: जितने वादे थे सर झुकाए थे, सिर्फ दो घूंट प्यास की खातिर,
0: वाह,
1: सिर्फ दो घूंट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: है गलत इसको बेवफा कहना, है गलत इसको बेवफा कहना, हम कहां के दुले दुलाए थे,
0: वाह,
1: आज कांटो बड़ा मुकद्दर है, आज कांटो बड़ा मुकद्दर है,
0: वाह,
1: हमने गुल भी बहुत खिलाए थे,
0: बहुत खूब,
1: जितने अपने थे सब पर आए थे,
0: बहुत अलग,
1: हमने हवा को गले लगाए थे,
0: वाह,
1: ते इश्क रेशम से बनी शाल है आस्था छू, इश्क रेशम से बनी शाल है आस्था छू,
0: वाह,
1: एक धागा जो खुले शाल उधर जाती है, आप पोशाक उधेड़ने पे हैं घबराए हुए,
0: वाह जी वाह,
1: आप पोशाक उधेड़ने पे हैं घबराए हुए,
0: वाह वाह,
1: साहिब इश्क में तो खाल उधर जाती है,
0: बहुत आला वाह,
1: तो आज के लिए इतना ही था,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत शायरी करती हैं, बहुत ही कमाल की शायरी, और आपका शुक्रिया अदा करें, शालीन हैं जो बेना हैं हमारी लता जी की, और वो प्रोग्राम सुन रही हैं, और वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, शालीना जी हैं और वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सबका, बहुत
0: बहुत शुक्रिया
1: टाइम दिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, वाह, दैट वॉज عتیقہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ان کا بھی اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں بھی ہمارے محترم, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, جتنے کی میں تعریف کروں کم ہے, اور یہاں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ندیم منصور صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ویلکم کہیں گے, جیئیں کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, سعد بسم اللہ کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے دے منمونے, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیسی جا رہی ہے اور کیسے گزاری آپ نے عید؟ ماشاء اللہ بہت ہی کمال کی, بہت خوبصورت ہے اور موسم بڑا پیارا تھا, ماشاء اللہ بڑا ہی انجوائے کیا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے.
2: کوئی بات نہیں
0: جی.
2: چلیں, یہ کچھ ٹپے ہیں,
0: یہ
2: ہیں
0: واہ جی واہ,
2: میری اپنے ہی لکھے ہوئے ہیں.
0: آپ کے خود لکھے ہوئے ہیں؟ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا کہنے مجھے, واہ واہ واہ واہ, کیا کہنے. یہ کب لکھے آپ نے یہ ٹپے؟ کب لکھے؟ عید کے دن لکھے یا عید کے بعد میں لکھے؟
2: عید سے پہلے لکھے تھے.
0: عید کے پہلے لکھے؟ واہ واہ واہ واہ, کیا کہنے میرے بھائی, کیا کہنے. واہ واہ,
2: تو یہ آپ کی نظر اور سب کی نظر.
0: بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ.

0: कमाल का दिया।
1: कड़ा थम थम वजदाए दिलां दे तारां नू कोई छेड़ के भजदाए,
0: क्या कहने
1: दिलां दे तारां नू कोई छेड़ के भजदाए।

ताडे वाल वेख चना दिल मेरे नी वस माया दिल मेरे नी वस माया तू ता दी छा माया वे तू

माया, साडे अच्छो नगर माया।

0: ओ कोई बर्फी खांदे ओ
1: बाबा
0: ओ कोई बर्फी खांदे ओ

0: बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया, खूबसूरत, और क्या कहने मेरे भाई। जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बहार आए, इतना खूबसूरत मैं आपने सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शादाबाद रखे, और क्या कहने मेरे भाई। जितनी भी तारीफ करूँ कम है मेरे भाई, और अगले आवर भी हम गाना सुनेंगे आपकी आवाज़ में, बड़ा ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम भाई, हमारे दोस्त, और जितनी इनकी मैं तारीफ करने कम है। हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इलेक्ट्रिक विद सनराइज रेडियो। सनराइज रेडियो।
2: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्दा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: नफसेन जायकातुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ पे क्या वजह है कि यहाँ पे अजान क्यों नहीं शो हो रही है? तो कोई बात नहीं, हम खुद यहाँ पे मैं अजान पेश कर देता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। और यहाँ पे हमारे टाइम टेबल साथ चलेंगे, और माशाल्लाह, और यूके के साथ, और ब्रैडफोर्ड में, और जो हमारे मकामी टाइम टेबल के साथ, और यहाँ पे टाइम होने वाला है, और माशाल्लाह मगरब की अजान यहाँ पे पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, हम यहाँ पे खुद पेश कर रहा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब अजीज़ हैं और जो मेरा साथ हैं, जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे मुर्शिद आ गए हैं। और क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने, हमारी खुशी नसीबी है। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं शकील साहब हैं, ओल्ड वे फ्रॉम बर्ल लंकशायर से हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम वेलकम जी, अनु खुश आमदीद आपके लिए यहाँ पे। और कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
1: अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं
0: हमारी दुआ में शाह आपके साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जल क्या कहने, वाह।
1: सभी सुनने वालों को मैं तहसीद मुबारक,
0: और आपको भी, आपको भी
1: जवेद मीर साहब, अगर तो महबूब बिलाही हैं
0: जी,
1: वाजिद भाई हैं, डॉक्टर मलिक साहब
0: जी,
1: श्री रुखसार साहब हैं
0: जी,
1: सर भाई चौधरी मुजफ्फर साहब, तारिक सुल्फी साहब हैं
0: जी,
1: श्री मुजफ्फर साहब चौधरी, फरियाद साहब, कितन भाई हैं,
0: वाह,
1: चौधरी नईफ साहब
0: जी,
1: रायत हसैन, तकबीर शाह है, आदर सैल अख्तर है
0: जी,
1: अब्दुल क्यूब साहब है
0: जी,
1: श्री मंसूर साहब, साजिद भाई हैं
0: जी,
1: और भी हमारे सितारा साहब, अतीका साहब आई थी, उनको भी बहुत बहुत अदाब
0: जी, अदाब,
1: मित्रा बहन है, गजाला बहन है, गुस्खारा साहब है
0: जी,
1: उम्मीद कुसुम साहब है, समन जी है
0: जी,
1: शाहपरी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ही मुबारक, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मोहब्बत की कलियां, चाहत के फूल,
0: वाह,
1: मेरी तरफ से करो ईद मुबारक
0: कबूल। आए हा, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
1: वतन से दूर और आराम से रहने वालों, तुम्हें ईद मुबारक,
0: आहा, क्या कहने,
1: प्यारे घर में रोजी कमाने वालों,
0: वाह वालेक, वाह जी वाह, क्या कहने,
1: शुक्रिया। बिछड़े मिलते हैं बाद मुद्दत के, इसको रोजे से ईद कहते,
0: वाह।
1: दर्द औरों का बांट लेने को, बस में हंसी में ईद
0: कहते हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब,
1: शुक्रिया,
0: वाह।
1: मनाएं हम भी ईद अपनी, दम भर शादमा होकर,
0: वाह,
1: लगा लो अपने गले से अगर मेहरबान होकर,
0: हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब।
1: तुझको मालूम है हम ईद मनाते थे कभी, अरे दुख दर्द तेरे साथ मनाते थे कभी,
0: कभी, आए हाय हाय, क्या कहने,
1: तुझे अपने,
0: वाह,
1: तुम्हें, तुझे अपने दिल से मैं बुलाऊं कैसे, बिन तेरे भला मैं ईद मनाऊं कैसे,
0: वाह वाह वाह,
1: कितना सितम ढाया है तेरे फिराक ने, तेरी जुदाई का दाग दिल से मिटाऊं
0: कैसे, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत वाह वाह, क्या कहने,
1: यूं हंगामे खुशियों के हैं चारों तरफ, उसने किरदार और अमल पर इंसार ईद है,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: कहने को मिल रहे हैं गले आज वो सब मगर, कहने को मिल रहे हैं गले आज सब मगर, अब आप दिल से दिल भी मिलाए ईद हो,
0: वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब।
1: दिल के जख्मों को जमाने से छुपाए कैसे, दूर अपनों से हैं ईद मनाए
0: कैसे, आए हाय हाय, क्या कहने,
1: मोहब्बत की नई दुनिया बसाएं, ईद का दिन है,
0: वाह,
1: पुरानी रंजिशों को भूल जाएं, ईद का
0: के, आए हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब।
1: हर ईद पे लुट जाती है हर मानव की दुनिया,
0: वाह वाह,
1: हर ईद पे खुल जाते जख्मों के खजाने,
0: आए हाय हाय हाय, वाह।
1: वक्त एक मुस्कुराहट मेरे दिल के लिए काफी, खुदा आज मेरी ईद का कुछ भरम रख ले,
0: आई हाय हाय, वाह वाह, मकरर जी मकरर, वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: फकत एक मुस्कुराहट मेरे दिल के लिए काफी,
0: वाह,
1: आज मेरे ईद का कुछ भरम रख ले,
0: वाह वाह वाह, बहुत खूब,
1: शुक्रिया,
0: वाह क्या कहने, कमाल कर दिया।
1: एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ आपको।
0: जी जी, अर्शाद अर्शाद।
1: क्या मनाएं किस हाल में आई है परदेश की ईद,
0: वाह
1: निकल आते हैं आंसू याद आती है देश की
0: ईद, वाह वाह वाह क्या कहने,
1: रहें वो खुशो खुरम अपने घर में अपने,
0: वाह
1: रहें वो खुशो खुरम घर में अपने, जिनके लिए हमको रुलाती है परदेश की
0: ईद, आए हाय हाय क्या कहने,
1: आते हैं याद जब वो फूल से चेहरे कुसलों में हमको कितना तड़पाती है,
0: आए हाय बहुत खूब बहुत खूब,
1: किससे गले मिले किसे कहें अपना हम,
0: वाह
1: किससे गले मिले किसे कहेंगे अपना हम, बस यूं ही तन्हाई में गुजर जाती है
0: आई हाय क्या कहने बहुत खूब,
1: कहते हैं हर बार परदेश में आई है ये आखिरी ईद,
0: आई हाय
1: कहते हैं हर बार परदेश में आई है ये
0: आखिरी ईद, वाह
1: अगले साल फिर आ जाती है परदेश की,
0: आई हाय हाय क्या कहने बहुत खूब,
1: शुक्रिया ये चंद थे
0: बड़ी खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत क्या कहने मैंने भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा ही प्यारा अंदाज जी, क्या कहने,
1: एक कुर्बानी पे ना एक नजम है शुगुफ्ता है,
0: क्यों नहीं जी क्यों नहीं, गो हेड जी, वाह वाह मैं कहने वाला था आपको कह कुर्बानी के वाले में कुछ कह दे जी वाह वाह क्या कहने,
1: वो शेर है
0: जी जी जी,
1: मैं जो कुर्बानी करता भी तो कैसे,
0: वाह
1: बहुत महंगे ये बकरे हो गए हैं,
0: आए हाय हाय वाह वाह,
1: कसाई तो कसाई है बहार हार,
0: वाह
1: बहुत बकरों के नखरे
0: हो गए हैं, वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने, वाह
1: तो ज़ियाउल कासमी ने एक बड़ी अच्छी जो मजाजिया नज़म लिखी है
0: जी जी
1: कुर्बानी पर
0: जी जी,
1: अज़्मे कुर्बानी किया था ईद कुर्बान थी करीब,
0: वाह वाह
1: मुझको एक दिन बकरा पीढ़ी ले गया मेरा नसीब,
0: वाह वाह क्या कहने,
1: बकरा पीढ़ी में नमूदे हशर के आसार थे,
0: वाह वाह क्या कहने क्या कहने,
1: लोग बकरों की तरह आरसू जलीलो खार थे,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने समझा था कि सस्ता जानवर बन जाए,
0: वाह वाह
1: क्या खबर थी रेट सुन के मेरा दिल दहल जाएगा,
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब,
1: मुझको एक बकरे ने दिया आवाज जबड़ा खोल कर,
0: वाह वाह
1: ले चलो मुझको यहाँ से मेरा रास्ता खोल कर,
0: वाह वाह बहुत खूब,
1: चार दिन से हूँ मैं भूखा पेट में खाली है आंख,
0: वाह
1: चार दिन से मुंह में बेमुसरफ है मेरे चार दांत,
0: वाह वाह
1: है मुजयन आजकल सींगों से परेशानी मेरी,
0: आई
1: मौलवी ने कह दिया है जायज है कुर्बानी
0: मेरी, वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने,
1: मुझसे हासिल मेरे मालिक का तारीफ कीजिए,
0: वाह
1: और फिर उससे मेरा सौदा बेदखल कीजिए,
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब, वाह क्या कहने, वाह मजा आ गया जी,
1: ये भी सुन ले आप मुझको ले जाएंगे जहाँ,
0: वाह
1: ईद के दिन ये कसाई बन के पहुँचेगा वहाँ,
0: वहाँ वाह वाह,
1: छोड़े इन बातों को अब तो इससे सौदा कर ही ले,
0: वाह
1: बारगेनिंग करके उसको आप पैसे दे ही दें,
0: पैसे दे ही दें, आई हाय हाय हाय क्या कहने,
1: आप जब आ ही गए हैं मुझको लेते जाइए,
0: वाह वाह
1: मेरे गुर्दे खाइए मेरी कलेजी
0: खाइए, वाह क्या कहने क्या कहने, वाह
1: आपको अल्लाह देगा सब्र की तौफीक भी,
0: वाह
1: अशर के दिन मैं करूँगा रेट की तस्दीक
0: भी, वाह वाह क्या कहने,
1: उसकी बातें सुन के मालिक उसका मुझ पतन गया,
0: वाह
1: और उस आलिम के हाथों में भी बकरा बन गया,
0: बकरा बन गया क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, वाह जी वाह क्या कहने,
1: ले लिए बकरे के पूरे 50,000, गर्चे मुझको यूं लगा दिल में छुरी है आर
0: आर पार, आई हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह
1: इस तरह वो पूरा कुर्बानी का अरमां हो गया,
0: आई हाय हाय हाय
1: इस तरह पूरा कुर्बानी का अरमान
0: हो गया,
1: यानी कुर्बानी से पहले खुद मैं
0: कुर्बान हो गया, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, आजकल बकरे भी जब पलाश देख रहे वो खुद बेहोश हो रहे हैं, क्या करें क्या करें
1: बकरे
0: क्या करें क्या करें, एनीवे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत अंदाज़,
1: पाकिस्तान में था तो एक बकरी मैंने पार रखी,
0: अच्छा
1: कुर्बानी तो नहीं होती, बकरी
0: कुर्बानी नहीं होती जी, बकरे जी होती जी जी।
1: तो ईद का दिन था तो वो कहीं से हलवा खा लिया उसने।
0: अच्छा
1: हलवा खा लिया उसने तो वो मर गई।
0: अल्लाह, अच्छा
1: हलवे से मर जाती है।
0: अच्छा वाह, अच्छा ओई होई होई।
1: वो शेर सुनाता हूँ उसके बाद जाऊंगा।
0: जी जी जी जी जी।
1: आज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई,
0: आई
1: आज अदा करने गया था
0: कौम
1: का लीडर कोई, संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया।
0: ओई होई जी।
1: एक कंकर फेंकने पे निदा उसने सुनी,
0: वाह
1: एक कंकर फेंकने पे निदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे तुमको क्या हुआ।
0: हाय हाय क्या कहने, वाह वाह,
1: तुम तो अपने आदमी थे
0: क्या कहने, वाह
1: तुम क्यों कंकर मारने लगा।
0: तुम क्यों कंकर मारने लगा, वाह क्या कहने। और वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी, बहुत खूबसूरत। और आजकल चर्चा हो रहा है, हमारे वसीम साहब गए हुए हैं, वसीम अकरम साहब गए हुए हैं, तो उन्होंने कंकर की आपने देखा होगा शायद, और उन्होंने बड़े स्टाइल से उन्हें कंकरी की है, और मैंने क्या क्या कहने। वाह जी वाह, वाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कबूल करें उनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: और सुना देता हूँ आपको, मर के हो जाते हैं दुनिया में अमर।
0: वाह,
1: मर के हो जाते हैं
0: दुनिया में अमर,
1: मौत ही तो आशिकों की ईद होती है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मौलिक साहब कह रहे हैं शुक्रिया अदा करने, आप ईद मुबारक कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपने नेक्स्ट आवर में आए और कुछ सुना दें हमें, हम इंतजार में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रॉब्लम लाइन
0: का इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, ये थे हमारे शकील साहब और कमाल कादरी, इन्होंने बहुत खूबसूरत गुफ्तगु की है, बड़ी अच्छी, और क्या कहने जी, और बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ पे टाइम चेक करेंगे,
2: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: Time in the studio 47 minutes past the 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Pervez Khan. Yahan pe chote se break karenge, break ke foran baad yahan pe mera saath de rahe hain hamare Chaudhry Faryaz sahab, bhi mera saath de rahe hain, unke chahne wale bhi unke hamara saath de rahe hain, aur Shukran bhai hamara saath de rahe hain, welcome kahenge unko bhi, jiyen kahenge, kuch hamdeed kahenge, sath bismillah kahenge.
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैन, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
5: सनराइज म्यूजिक। The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, और हमारा साथ दे रहे हैं चौधरी फरियाज साहब, भी हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ गई है और वो छा गए क्या कहने, और हमारा साथ दे रहे फिलहाल यहाँ पे हमारा साथ दे रहे शुकरान भाई हैं, और उनको भी वेलकम कहेंगे, जिया कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी कैसे हैं
0: आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी आवाज सुन के और कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप भाइयों की दुआ से बड़ी खूबसूरत गुजरी है, और हमने भी आपके साथ माशाल्लाह ईद मनाई है और बहुत अच्छा लगा, और आपका हमेशा ही बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े प्यार के साथ गुफ्तगू होती है, माशाल्लाह बड़े प्यारे करने वाले हैं आप खुद भी माशाल्लाह, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और जब भी आप आते हैं माशाल्लाह। और आज हमारे लिए क्या लेके आए?
1: सर जी आपके लिए एक शेर लेके आया हूँ।
0: जी जी अरशाद।
1: वो कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही।
0: खुली रही, हाय हाय हाय हाय, बहुत ही गहरा।
1: मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें
0: खुली रही,
1: आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, इसको दोबारा करें, ओए हो दिल पे जाके लगा है, दिल पे वाह।
1: वो कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही,
0: वाह,
1: आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की।
0: तेरे इंतजार की, वाह वाह वाह वाह, इंतजार इंतजार ही होता है मेरे भाई, क्या करें क्या करें मेरे भाई।
1: गाना सारे गाना जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: इंशाल्लाह आप

0: तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू साजी, बहुत शुक्रिया।
1: कमाल ही कर दिए मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनाया। आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, और ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली मेरे भाई। आप आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, कमाल कर दिए, कमाल कमाल।

वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों जो मेरे बहन भाई साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारा साथ दे रही हमारी प्यारी बहना हैं, और उनको भी वेलकम कहेंगे, जियाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। वो आ गई और हमारी ईद होगी और क्या कहने। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे राय साहब हैं, माशाल्लाह वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। क्योंकि टाइम बहुत ही कम है इस आवर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं किसी को लेके जाऊँ और वहां पे मैं कहूं कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़ी देर के बाद यहां पे न्यूज ब्रेक भी आने वाली है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और बहुत अच्छा लगा। और ये जो गाना सुन रहे माशाल्लाह, ये हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं, हमारे शुक्रान भाई ने गाना गुनगुनाया। बड़ा ही प्यारा गीत था, बड़ा ही प्यारा गीत और बहुत ही खूबसूरत गीत है, क्या कहेंगे इसके बारे में, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी फरियाज साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, आप दोबारा फोन कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। और पता नहीं क्या वजह, मैं यहाँ पे मैं हेलो हेलो कह रहा हूँ तो आपका कोई मसला हो रहा है वहाँ पे, तो आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा खुश रहे, शादाबाद रखे, और हमेशा ही दुआएं करते हैं हमारे लिए, और हमेशा ही हमारा साथ देते हैं, माशाल्लाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत खूबसूरत गीत आप सब दोस्तों के लिए।

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, और यूर लिसनिंग टू सुंदर रेडियो 103.2 एफएम। बॉबी शुक्रिया आपका भी, और जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि आपने हमें टाइम निकाल के फ़ोन करते हैं और अफजाई करते हैं। बॉबी नशीन जी, बॉबी शुक्रिया आपका भी, और हमारे साहब चौधरी फरियाज साहब आने वाले हैं, आपने वरी नहीं करना है। बॉबी शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, और आपने दोबारा फ़ोन किया और अफजाई करने के लिए बॉबी शुक्रिया। और यहाँ भी हमने न्यूज़ ब्रेक करनी है, कीप इट लॉक्ड।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जो हमारा साथ दे रहे हैं। और आपने सुना हिट ऑफ द अब, क्योंकि हमारा साथ काफ़ी टाइम के हॉल पे हैं, हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, और हमारी प्यारी बहना भी हमारा साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का भी। और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 4:04 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in with the Parviz Khan. Bobby, shukriya aapka bhi. Chaudhry Firyaz sahab, aapki line drop ho chuki hai, aur jab bhi aapko mauka mile aap hum dobara phone kar sakte hain. Bobby, shukriya aapka bhi. Nasheed sahab, Bobby, shukriya aapka bhi, aap hamara saath de rahe hain. Satara ji hai hamara saath de rahe hain, Bobby, shukriya inka bhi. Yahan bhi hamara saath de rahe hain hamare Rai Azhar Hussain sahab hain, mashallah, aur Bobby, shukriya inka bhi, wo hamara saath de rahe hain. Bobby, shukriya. Usse pehle maine ek baat karni hai hamari प्यारी बहना से, सितारा जी से, क्योंकि वो हॉल पे हैं तो पता नहीं लगेगा उनको कि वहाँ पे वो, क्योंकि वहाँ पे खामोशी होगी वहाँ पे, तो उनको मैं ये एक सेकंड

0: राइट, ये भी मसला हल कर दिया हमने, क्योंकि वहाँ पे जब आप होल्ड करते हैं वहाँ पे खामोशी होती है, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई राय अजहर हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड से हैं। और क्या कहने जी, वाह जी वाह, हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर,
1: सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुन के और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो हाँ, बहुत आपकी मोहब्बत
0: जी। और आप,
1: सब आपका बड़ापन है और सब दोस्तों को सुनने वालों को ईद मुबारक, जो गुज़श्ता खैर,
0: और आपको भी, और अभी भी हम ईद मना रहे हैं माशाल्लाह। क्या कहना,
1: तो वो तो खैर आपका जो शो होता है वो ईद ही होता है
0: माशाल्लाह। क्या कहने, ओए होए होए, मुझे तोहफा मिल गया आपसे तरफ, वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। और आपके लिए इतनी फरमाइशें आ चुकी हैं, इतने दोस्त आपको याद करते हैं और आपकी हाल वाल पूछते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हवा के दोष में आए, तो आप आ गए तो बड़ा अच्छा लगा।
1: नहीं, ये सब उनकी मोहब्बत और प्यार है। मेरा तो कोई, मैं तो एक नलायक सा आदमी हूँ
0: जी। तो काश इस दुनिया में ऐसे ही हो, आप जैसे सारी दुनिया में ऐसे ही होते तो दुनिया को वाह क्या कहने।
1: तो बड़ा अच्छा लगा। मैं जब वो रास्ते में था तो मैंने ऑन किया, तो वो शकील भाई थे, वो
0: जी
1: सुना रहे थे कलाम
0: जी,
1: तो उनको भी उनकी मोहब्बत, उनका तो माशाल्लाह हाफजा इतना है कि माशाल्लाह
0: जी,
1: सबके नाम, और वो बड़ा रश का था उनके ऊपर
0: माशाल्लाह। क्या कहने क्या कहने, वाह जी, उनकी मोहब्बत है ना।
1: हाँ जी
0: जी, वाह।
1: तो मैं तो वो उनका माशाल्लाह, तो बाकी मुझे तो कोई नहीं याद रहते।
0: कोई कोई बात नहीं, सबको सलाम पेश करने और सब सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। जी जी
1: हाँ जी, सब सुनने वालों के लिए। तो बाकी मुझे, आपको पता है मेरे पास तो वो बस नहीं, क्योंकि अपनी कुछ चीजें लिखता लिखता
0: सार जी, तो आप जो लिखाई करते हैं ना, बड़ी खूबसूरत है आपकी, जो प्यारी खूबसूरत जो गुफ्तगू करते हैं, लिखाई करते हैं, बड़ी नायाब होती है और थोड़ी जी हट की होती है।
1: ये आपकी मोहब्बत है, आप कह देते हैं, वरना मेरे हल्के में जो मेरे संजीदा दोस्त है वो मुझे कहते हैं राय साहब, जो हमें आप सुनाते ना हमारे सार से गुजर जाते
0: उनको थोड़ा सा दर्श दिया करें, उनको कहेंगे यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, उनको दर्श भी दिया करें ना, आपको आप उनको सुना रहे तो शायद उनको समझ ना लगी, उनको उनको पहले उनको दर्श दे दिया करें कि यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, ठीक है ना।
1: तो वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं तो परवेज खान के शो में भी जाके उनके सुनने वालों को भी
0: नहीं बड़े बड़ा ही बड़े आपके लिए देखो कि सब आते हैं ना, तो माशाल्लाह आपकी तारीफ करते हैं माशाल्लाह, लंदन से, ब्रैडफोर्ड से, ड्यूसबरी से, माशाल्लाह जो शकीन है शायरी का, माशाल्लाह जो पसंद करते हैं, बड़ी खूबसूरती है जो आपकी, जो अल्फाज आप यूज करते हैं थोड़े जो हार्ड के होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, और ये खूबसूरती आप के अंदर है जी।
1: देखे जैसे फसलों को पानी ना मिलने की वजह से फसलें नहीं होती ना, इसी तरह
0: जी
1: जिंदगी असूलों के बगैर नहीं होती, जब असूल ना हो तो जिंदगी नहीं होती,
0: जिंदगी नहीं होती, बहुत तो खूबसूरत।
1: इसीलिए इंसान को अपने असूल प्रिंसिपल्स और उनके उनके साथ रहना
0: चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे जी ऐसे।
1: तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, आप माशाल्लाह आपका शो इतना हैवीली पॉपुलेटेड होता है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जी,
1: अगले सब लोग लाइन में होते हैं
0: माशाल्लाह।
1: तो हैं बैक बेंचर तो
0: नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। आप ऐसी बात ना किया कहने, क्योंकि आप जो माशाल्लाह और आप हमारा फैमिली है, फैमिली की तरह ही माशाल्लाह आप सब फैमिली है, तो एक से बढ़कर एक है, जैसे फूलों का गुलदस्ता है, हर फूल में एक अपनी खुशबू है, तो वही बात हो रही है, तो आपकी अपनी खुशबू है माशाल्लाह, और आप अशआर पेश करें और हमें अच्छा लगेगा अरशाद जी। जी
1: ये ताज़ा गजल के कुछ अशआर हैं कि मसलूब समझ कर कभी मकतूल समझ कर।
0: वाह क्या कहने, बहुत ही गहरा।
1: मसलूब समझ कर कभी मकतूल समझ कर,
0: वाह,
1: मिलता है हमें अपना वो मामूल समझ कर,
0: मामूल समझ कर, हाय हाय हाय हाय क्या कहने।
1: और मैं शेर देखिए कि मैं भूल गया रखना वो दाने की कटोरी,
0: हाय हाय,
1: मैं भूल गया रखना वो
0: दाने की कटोरी, आहा,
1: चहके थे परिंदे जिसे मामूल समझ कर।
0: ओए होए बहुत ही गहरा, वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने, वाह वाह
1: जी। मैं भूल गया रखना वो दाने की कटोरी,
0: वाह,
1: चहके थे परिंदे जिसे मामूल समझ कर,
0: कर वाह वाह,
1: और सुनता कोई बात उनकी तो मैं उनको बताता,
0: आहा,
1: خود دور رہا ان سے جو مشغول سمجھ کر.
0: بہت ہی خوبصورت, واہ کمال کر.
1: دور رہا ان سے جو مشغول سمجھ کر, اور میں تیرے مکافات عمل پر رہا حیران.
0: واہ واہ واہ.
1: میں تیرے مکافات عمل پر رہا حیران
0: حیران. واہ واہ.
1: میں لوٹا گیا چنگی کا مسحول سمجھ کر.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب, کمال کمال.
1: میں تیرے مکافات عمل پر ہوں حیران.
0: واہ.
1: میں لوٹا گیا چنگی کا محصول سمجھ کر, اور اریانی کا تانا ہے جو زندوں کے لیے ہے.
0: واہ.
1: اریانی کا تانا
0: ہے جو زندوں کے لیے ہے. واہ.
1: مردوں پہ یہ کپڑا ہے بس پھول سمجھ کر.
0: آئی ہائی ہائی ہائی ہائی.
1: مردوں پہ یہ کپڑا ہے
0: واہ واہ,
1: فقط پھول سمجھ کر. اور تم اے خدا تیری خدائی ہو سلامت.
0: واہ.
1: تم اے خدا تیری خدائی ہو سلامت.
0: واہ.
1: اب چھوڑ گئے مجھ کو بھول سمجھ کر.
0: آئی ہائی ہائی ہائی ہائی.
1: تم چھوڑ گئے مجھ کو ایک بھول سمجھ کر. تم چھوڑ گئے مجھ کو ایک بھول سمجھ کر. اور کانٹوں کا ہے تحفہ جو لے آئے ہیں گھر میں. کانٹوں کا ہے تحفہ جو لے آئے گھر. ہر خار کو چوما کیے ایک پھول سمجھ کر.
0: بہت خوب بہت خوب بہت خوب.
1: اور ایک شعر دیکھیے کہ واپس
0: جی.
1: انصاف ادھر ہے تو ادھر دھجیاں ہیں اس کی. انصاف ادھر ہے تو ادھر دھجیاں ہیں اس کی. واپس چلا آیا اسے معذور سمجھ کر.
0: معذور سمجھ کر. آئے ہائے ہائے, کیا کہنے.
1: اور اظہر اظہر یہ مسیحائی ریاضی تو نہیں ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ.
1: اظہر یہ ریاضی
0: تو نہیں,
1: مسیحائی ریاضی تو نہیں.
0: واہ واہ.
1: جو کرتے رہے علت و معمول سمجھ کر.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: بس ایسے ہی
0: بڑا ہی کمال کا لکھا ہے, اور بڑے ہی خوبصورت الفاظ آپ نے چنے ہیں. اور کیا الفاظ آپ نے چنے میرے بھائی, واہ واہ واہ. میں آپ کو ہوا کے دوش میں دوش میں یہاں پہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ بھی بڑا ہی خوبصورت. اور کیا کہنے میرے بھائی, آپ نے تو محفل لوٹ لی میرے بھائی, کیا کہنے میرے بھائی.
1: واہ
0: واہ واہ واہ واہ واہ. بہت ہی خوبصورت. اور میں نے کہا کہ کیا کہنے میرے بھائی, جتنی بھی میں آپ کی تعریف کروں کم ہے. بڑا ہی خوبصورت انداز آپ کا, بڑا ہی پیارا انداز. اور میرے بھائی لکھنے
1: کی محبت ہے,
0: بہت کمال کے لکھتے ہیں اور خوبصورت لکھتے ہیں میرے بھائی. اور اس کو جو نا کبھی چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی, بہت ہی کمال کی.
1: جی بس وہ اصل میں نا وہ یہ شکیل بھائی کو بھی پتا ہوگا کہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے.
1: کیونکہ میں نے پہلا شعر اپنا کہا تھا کہ میٹرک میں میں تھا, میں نے اپنا شعر کہا تھا کہ
0: جی
1: وہ میرے چہرے کی زردی کو دیکھ کر ظالم.
0: ہوئے ہوئے
1: اندازہ لگائی, یہ میرا میٹرک
0: کا شعر ہے. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا کہنے. واہ واہ واہ واہ.
1: وہ میرے چہرے کی زردی کا دیکھ, وہ میرے چہرے کی زردی کو دیکھ کر ظالم.
0: واہ.
1: تمہارے چہرے کی رنگت کا پھر نکھر جانا.
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.
1: نکلنا گھر سے نئے چاند ڈھونڈنے کے لیے.
0: واہ.
1: اندھیرے ساتھ لیے شب کو اپنے گھر جانا.
0: واہ واہ واہ.
1: اور یہی تقاضا ہے حالات کا اثر شاید.
0: واہ.
1: یہی تقاضا ہے حالات کا اثر شاید.
0: واہ.
1: انہیں سمیٹ کے لانا تو خود بکھر جانا.
0: اوئے ہوئے کمال کا دی.
1: تو جس بندے کے یہ شعر
0: یہ میٹرک میں ہو تو وہ آگے کیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.
1: بوڑھے بارے میں کیا.
0: واہ واہ واہ, کمال کر دیا. اور ہمارے موتر میں اور ہماری ایک بہت خوبصورت شاعرہ ہیں رخسانہ جی ہیں ماشاءاللہ, اور جیوز بلی سے ماشاءاللہ وہ آپ کا داد دے رہی ہیں ماشاءاللہ. اور بڑے ہی خوبصورت انہوں نے پھول بھیجے ہیں, اور بڑے ہی کمال کی انہوں نے گفتگو کی ہے. بڑا انہوں نے انجوائے کیا, بڑا ہی خوبصورت انجوائے کیا. انہوں نے کہا بڑی خوبصورت شاعری کی آپ نے, تھوڑے سے ہٹ کے کی ہے. بڑی پیاری, بڑی خوبصورت, بہت
1: خوبصورت. یہ ان کا بڑا فن.
0: بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت. واہ جی واہ, بہت بہت شکریہ سر, آپ آئے اور بہار آ گئی, بہت اچھا لگا. بہت بہت
1: محبت آپ کے ٹائم دینے.
0: نہیں نہیں نہیں میرے بھائی, یہ آپ کے بھائی یہاں پہ بیٹھے, یہ پروگرام ہی آپ کا میرے بھائی. بہت بہت شکریہ, اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے. بہت بہت اللہ حافظ, اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. واہ جی واہ, واہ واہ واہ واہ. جتنی بھی میں ان کی تعریف کروں کم ہے. اور یہاں میں چھوٹی سی بریک کریں گے, بریک کے فوراً بعد ہے ہمارا ساتھ دینے ہماری پیاری بینا ہے ستارہ جی ہیں, ویلکم کہیں گے, جی ہیں کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, سب بسم اللہ کہیں گے ان کو.
2: رنگ कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस 4 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल बेलव्यू रेजिडेंसेस लग्जरी कुशादगी और स्टाइल अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें
0: राइट वेलकम बैक और आपके साथ यहाँ भी हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया वैसे थे हमारी प्यारी बहना है सितारा जी हमारा साथ दे रही उन्होंने कहा कि क्वीन आप उनको लेके जाएं चौधरी फरियाज साहब को पहले लेके जाएं और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि हम भी सुनेंगे माशाल्लाह और चौधरी फरियाज साहब को भी और बड़ी अच्छी हस्ती हमारे बड़ी प्यारी हस्ती है माशाल्लाह और बड़ी ही खूबसूरत इंसान भी हैं बड़े प्यारे इंसान हैं बड़े ही खूबसूरत हमारे भाई हैं और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत सारे हैं और मैं किस किस की यहाँ पे मैं तारीफ करूँ यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु चौधरी साहब बिस्मिल्ला चौधरी साहब तुम्हारे इंतजार के बिच साढ़े माशाल्लाह उन्होंने फ़ोन किया उजरा अफजाई किया नशीन साहब हैं शाह परी जी वो अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम सुन रही हैं माशाल्लाह और फजाना जी हैं वो भी सुन रहे हैं रेखा जी हैं वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उन्होंने बड़ी ही तारीफ की आपके लिए और दुआएँ की हैं और आपके ईद मुबारक कहा माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई आप आए और बहुत अच्छा लगा जी
1: अरेश भाई
0: जी जी
1: आप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है
0: जी जी
1: जो आप मुझे याद करते हैं
0: जी जी
1: आपने जिन हस्तियों के नाम लिए हैं
0: जी जी
1: या कुछ और जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं
0: और स्पेशली सलाम पेश करना आपकी हमारी प्यारी बहना है सितारा जी वो होल पे हैं वो आपको बड़े ही बड़े एहतराम के साथ उन्होंने आपके लिए दुआएं की हैं और हमेशा ही दुआएं करती हैं आपके लिए
1: मैं आखना मेरे तो पहले उन्हें मौका दो
0: उन्हें की मौका दिया बड़ी गल है जी चौधरी साहब मैं यहाँ पे आपके लिए शुक्र गुजार हूँ ममनून हूँ आपका कि देखो इतने खूबसूरत इंसान
1: है
0: वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने मेरे भाई का क्या कहने देखो ये होती है खूबसूरती होती है ये आपके लिए मेरे भाई हमारी तरफ से और जो आपकी जो सखियाँ सहेलियाँ हैं उनकी तरफ से आपके लिए आवाज़ आई है ना वाह जी वाह माशाल्लाह आप थोड़ा होल्ड करें बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया वाह जी वाह क्या कहने और यहाँ पे हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी बेना हैं और बेना जी आ गई हैं और छा गई हैं और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखो आपका भाई हमारा भाई चौधरी फरियाज साहब ने कहा कि आपको पहले लेके जाएं देखो
5: अरे नहीं नहीं नहीं मैं तो वेट कर सकती हूँ उनको ले लीजिए कोई बात नहीं
0: अच्छा श्योर अच्छा
5: हाँ अगर वो हैं मुझसे पहले तो उनको पहले ले लीजिए
0: नहीं नहीं वो हाँ जी
5: वो पहले
0: जी जी अच्छा, माशाल्लाह क्या कहने उन्होंने कहा कि आप बड़े दिनों के बाद आई हैं तो आपको पहले लेके जाएं और देखो ये हाँ। होती है खूबसूरती हमने आपको मिस भी हाँ। करते हैं तो आप ये पहले बताओ कि कहाँ थी आप ये पहले
5: मैं अपने घर में थी
0: अपने घर में थी ठीक है चलो ये इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे कि अपनी कितनी आपकी गैर हाजिरी हैं तो चलो आज जो ना हम ईद है इसलिए हम आपको माफ करते हैं ठीक है
5: चलिए थैंक यू आप हमेशा मुझे माफ करते हैं
0: जी,
5: मैं भी सबको माफ कर देती
0: हूँ जी वाह क्या कहने जी
5: थैंक यू तो सबसे पहले तो ये दो शेर है
0: जी, जी।
5: तरस रहा हूँ कोई माँ सा वजूद
0: वाह वाह वाह वाह
5: तरस रहा हूँ कोई माँ सा वजूद दुआए नूर पढ़े और मुझ पर दम कर दे
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह
5: ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी
0: वाह जी वाह
5: और एक और है
0: जी जी
5: बस एक वस्फ है जो हम ज्यादा रखते हैं बस एक वस्फ है जो हम ज्यादा रखते हैं, जब ही फराख तबीयत कुशादा रखते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
5: थैंक यू। और इनको सलाम, क्या नाम है इनका जो अभी जिन्होंने मुझे टाइम दिया है,
0: चौधरी फियाज साहब,
5: चौधरी फियाज साहब जी, उनको मेरा सलाम कहिए और आपको अदावत करती
0: हूं। अच्छा, आपको आपको पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने फ्लश किया था, फोन किया था अतिका साहब ने, तो उन्होंने आपके लिए सलाम पेश किया है और मैं सलाम पेश करती हूं और आपके लिए ईद मुबारक भी उन्होंने कहा। जी बोला,
5: वालेकुम अस्सलाम, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक
0: जी
5: और खुश रहे हमेशा। तो मैं भी यही कहूंगी कि आपकी खूबसूरत महफिल को सलाम
0: जी,
5: और इसके अलावा आपके उस्ताद मोहतरम को और आपके मुर्शिद साहब को भी सलाम
0: और
5: दुआएं। बाकी सुमित्रा जी इधर साहब को नमस्ते, और फिर आखिर में अतीका जी, सलीना जी को भी मोहब्बत भरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
5: तो पहले तो एक अच्छी सी बात करते हैं
0: जी, जी।
5: कहते हैं इंसान का जमीर उसके लिए बहुत बड़ी अदालत है, दुनिया में कोई और उसको सजा नहीं दे सकता, मगर जमीर इंसान का जरूर सजा देता है।
0: वाह वाह वाह।
5: और ऐसी सजा देता है कि मरते वक्त तक वो इंसान सुकून नहीं पाता, और फिर आखिरत की सजा अलग है, क्योंकि किसी के साथ बुरा करोगे एक दिन तुम्हारे पास वापस आएगा,
0: वापस आएगा काम है जी।
5: हाँ, इसीलिए कहते हैं कि किसी की आंख में आंसू मत लाओ
0: जी,
5: वरना एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और वक्त से, और इसलिए वक्त से डरो, वक्त की डोर अल्लाह ताला के हाथ में है
0: जी,
5: और अल्लाह ताला की ताकत के आगे शैतान की ताकत जीरो है।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह जी वाह, बेनाम, कमाल कर दिए, कमाल कमाल,
5: थैंक यू वेरी मच। तो अभी एक नज़म है
0: जी जी,
5: फिर बाद में छोटी सी एक शायरी सुनाऊंगी
0: जी जी,
5: ये बहुत ही सीरियस वाली है, आप सुनिए
0: जी जी।
5: अर्ज क्या है
0: जी जी, अर्शाद।
5: नमी आंखों से लहजों से हलावत बेच देते हैं,
0: बहुत खूब।
5: नमी आंखों से लहजों से हलावत बेच देते हैं, बहुत मजबूर होते हैं जो चाहत बेच देते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने,
5: थैंक यू। कि इस बाजार में लाचारियां नीलाम होती हैं,
0: वाह,
5: यहाँ पर माएं ममता बाप शफकत बेच देते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
5: कि इस बाजार में लाचारियां नीलाम होती हैं। हमारे माशरे में रहनुमा का अलमिया ये है, सियासत के लिए गैरत शराफत बेच देते हैं।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
5: कभी अपने ही लफ्जों में सफाई पेश करते हैं,
0: वाह,
5: कभी अपने ही लफ्जों में सफाई पेश करते हैं, कभी अपने ही लहजे की वजाहत बेच देते
0: हैं। वाह वाह वाह वाह,
5: थैंक यू। फकत दो चार पैसों के एवज मासूम बच्चों की,
0: वाह,
5: फकत दो चार पैसों के एवज मासूम बच्चों की, मुअज्जिज़ मेरी बस्ती के शरारत बेच देते हैं।
0: आए हाय, क्या कह रहे हैं,
5: थैंक यू। यहाँ पर बेगुनाहों की जबानें काट कर काजी, यहाँ पर बेगुनाहों की जबानें काट कर काजी, समाज से जरा पहले अदालत बेच देते हैं।
0: आए हाय,
5: ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपने हक में भी नहीं लड़ते।
0: आए हाय हाय,
5: ये कैसे लोग हैं जो अपने हक में भी नहीं लड़ते, अना वाले खुदी बागी बगावत बेच देते हैं,
0: बेच देते हैं।
5: मसल देते हैं जुगनू को जरा सी रोशनी लेकर, मसल देते हैं जुगनू को जरा सी रोशनी लेकर, सरे बाजार तितली की नजाकत बेच देते हैं।
0: आए हाय, क्या कहने,
5: नमी आंखों से लहजों से हलावत बेच देते हैं, बहुत मजबूर होते हैं जो चाहत
0: बेच देते हैं। आए हाय,
5: थैंक यू थैंक यू। अब एक ये गजल है,
0: गजल है जी जी जी,
5: क्या कहते हैं वो अबिदर परवीन साहब की जो है वो पढ़ती हैं, तो जो मुझे बहुत पसंद है।
0: वाह जी वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने,
5: तो मैं थोड़ी तरन्नुम से पढ़ती,
0: आप गुनगुनाएंगी। वाह जी वाह, क्या कहने
5: जी
0: जी,
5: थैंक यू थैंक यू
0: जी जी, वाह वाह वाह।
5: तो अर्ज किया है,

0: बहुत ही खूबसूरत है, होए होए, क्या आवाज आपने पाई, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज है, बड़े प्यारे, क्या कहने, क्या कमाल का जी, बहुत ही खूबसूरत, वाह जी वाह, मजा आ गया जी, बहुत बहुत
1: रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं तो हौसला आ जाता है,
0: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप आए और बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों की बात है, और हमारी ईद होगी, वाकई हमारी ईद होगी,
1: हमारी भी ईद होगी
0: माशाल्लाह, और आइंदा आपने गैर हाजिरी नहीं करनी, ये ना हो कि आप 6 महीने के और गैर हाजिर हो जाए,
1: नहीं बस पता क्या आपकी लाइन भी मुश्किल से मिलती है
0: जी,
1: और फिर मैं थक जाती हूँ बहुत
0: ज्यादा, चलो
1: ये तो मैंने सुना दिया था ना, जो हम लोग चैनल में शेर तो सुना दिया था, चलिए ठीक है, और उनको टाइम देते हैं, मेरा दोबारा से अस्सलाम
0: वालेकुम, अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वाह, ये थी हमारी प्यारी बहना, और इनका जितनी भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारे साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाद साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका,
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है, खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है, महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल, अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 0127-4288-252 पर कॉल करें।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्दा दिन लग जाना है,
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ, उना ने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
0: राइट, वेलकम बैक, लिसनर, रेडियो 103.2 एफएम, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और इनके चाहने वाले इतने हो गए हैं, और क्या कहेंगे भाई के इनके बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और क्या बात है मेरे भाई की, आप आए और बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया, और बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी प्यारी बहना ने बड़ी तारीफ की आपकी, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा लगा,
5: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी,
5: मैं तो सोच रहा मैं
0: जी जी
5: सारिया ने कितनी तारीफा करा, फिर भी आखना
0: नहीं, बड़ी बड़ी कुछ अच्छा लगता है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा, और हमारे मोहतरम में भाई अली भाई वो आपको सलाम पेश करें, शाह जी हैं और शुएब भाई हैं, शबरेज भाई हैं माशाल्लाह, और उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में आपको वेलकम किया जी, का खुश आमदीद का माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह जी।
5: चलो जी, मैं सब दोस्ताना
0: जी
5: शुक्रिया अदा करना, और सभा की मैं ईद मुबारक, और मेरी तरफ उन्होंने दिली नेक दुआएं ने अल्लाह पाक ने सारे के मिशन सलामत रखन, उन्होंने मोहब्बतों का वास्ते कायम दायम रहे,
0: आमीन आमीन आमीन आमीन,
5: उन मैं सलाम दुआ करा
0: जी जी बिस्मिल्लाह जी जी बिस्मिल्लाह,
5: सब तो पहले अतीका बाजी ने
0: जी जी
5: नशीन जी ने, अतीका बाजी और नशीन जी हमेशा मेरी बड़ी हौसला अफजाई करने ने
0: जी,
5: मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ
0: जी,
5: और मेरे तरफ ढेर सारिया दुआओं ने
0: जी,
5: मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं इन्होंने शुक्रिया अदा कर सका,
0: हाय हाय क्या कहने, वाह
5: जी, इन्होंने सिमी जी ने
0: जी,
5: और उन्होंने अम्मा जी ने, गजाला बाजी ने
0: जी,
5: उम्मे कुलसूम जी ने, सीमा जी ने, शाहपरी जी ने, शुक्रिया शाहपरी याद करने ने, जुलेखा जी
0: जी,
5: सितारा जी,
0: बाबी
5: साहिबा ने
0: जी,
5: गुजर भाई ने, रेखा जी, फरजाना जी
0: जी,
5: सहमा जी, सभा जी, अरजोत जी, रफसाना जी
0: जी,
5: सोनिया जी, और इन सभा की मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक, जहांगीर साहब ने, आज सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सैन चक्की अली ने
0: जी,
5: शकील साहब ने, हीरा साहब ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कयूम भाई ने
0: जी,
5: नमीद राणा साहब ने, सारे दोस्त जनाब तारक भट्ट साहब ने
0: जी,
5: चौधरी मुजफ्फर साहब ने, सारे संगी और चौधरी यासर साहब ने
0: जी,
5: और सारे मोहतरम डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने
0: जी,
5: चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, राजा वकास साहब ने, राजा जुल्कर नैन साहब ने, और जफर अली हीरो साहब ने, महमूद साहब ने, और राजा शोएब साहब ने, और भी जितने मेहमान ने, महफिल चाय ने, राय साहब आए ने, और जितने बड़ी खूबसूरत महफिल आज,
0: बड़ी प्यारी खूबसूरत महफिल, बड़ी खूबसूरत नायाब महफिल हुई, बहुत बहुत वाह।
5: सभा की मेरा बहुत बहुत सलाम, ईद मुबारक,
0: खैर मुबारक।
5: परवेज भाई
0: जी जी,
5: तुसा सबनिया दवावां नी मिकी बड़ी जरूरत है, यकीन करो जेड़े सेहत इतनी खराब है,
0: अल्लाह रहम करे जी,
5: बस मैं सही जसी ना करी,
0: अल्लाह अल्लाह रहम
5: करे।
0: मैं सबको रिक्वेस्ट करना कि मेरे भाई के लिए जी दुआ करें, मेरे भाई के लिए दुआ करें, खसूसन दुआ करनी है, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँ, जो भी मेरे बहन भाई साथी और सहबाब अजीज सुन रहे हैं प्रोग्राम को, तो हमारे मोहतरम में चौधरी फरियाज साहब के खसूसन आपने दुआ करनी है जी।
5: मैं कई दफा सोचना तुझे छुट्टी चाहिए ना, फिर जो तुझे जितने महफिल ने चलो, जितने मेहमान ने
0: चौधरी फरियाज साहब ने हमें रिकॉर्डिंग करनी है, शेर शायरी का रिकॉर्ड करसा, तो उन्हें क्या थोड़ा जा देर थोड़ी देर बाद दसन, तो उन्होंने देखो आवा के दोष में कह रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने मर्जी की रिकॉर्ड करा शेर शायरी की, उन्होंने फरमाइश की तुम गाना भी गुनगुना करो जी,
5: अगर से ठीक होने ना से गाना सुना यकीन करो
0: जी,
5: जुमे वाले दिन मैं पूरी दिहाड़ी तुसा ने
0: जी
5: दिहाड़ी जो साल जी
0: अल्लाह अल्लाह रे अल्लाह रे हम दुआ गो है मेरे भाई,
5: दुआवा चाहिए
0: आपके, दुआ गो
5: करो मेरी से ठीक है, पर
0: मेरे भाई
5: उन्होंने फरमाइश ने मुताबिक इंशाल्लाह
0: जी
5: अच्छे दाद नाल कोई गाना पेश कर,
0: वाह जी वाह क्या कहने जी,
5: शायरी शुरू करा, बिस्मिल्लाह करा
0: जी जी, बिस्मिल्लाह
5: लिख लेने के किसे फूल ते असर फलैल अंदर,
0: ओए होए होए होए क्या कहने,
5: किसे फुल दे अतर अतर फलैल अंदर, खुशबू नहीं तेरे पसीने तो वध,
0: वाह
5: सोने दंद मुबारक जनाब दे दो, सोने दंद मुबारक जनाब दे जो चमक रख दे हर एक नगीने तो वध,
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने,
5: बेमिसाल तेरा ला जवाब जुल्फा हुसैन सरकार के अर्श दे जीने तो वध, सारे जग दे विच हुसैन तड़की कोई शहर नहीं मक्के मदीने तो
0: वध, वाह वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
5: बिस्मिल्लाह करा फिर
0: जी,
5: आखिया वसी दुनिया विच सारे रंग सोने पर नहीं अफजल सबस से काले तू वध, रोशन अर्ज समा सूरज चन तारे नहीं रोशनी उस दे उजाले तू वध,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
5: खातर उमर जो रोया खातर उमर जो रोया विच गारा नहीं अमदर्द कोई उस मतवाले तू वध, रुतबा किसे दा उच्चा ना परवेज तड़की कसम मोला दी कमले वाले तो वध,
0: वध माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने क्या कहने माशाल्लाह,
5: ये मजाज ने रंगे चखने ने के सोखा हरगिज ने वसल नसीब होंदा,
0: वाह
5: सोखा हरगिज ने वसल नसीब होंदा, तेरे यार ते रुलना पै जांदा,
0: वाह
5: अखा मिलके जद दो चार अमन खुफिया राज नो खुलना वो पै जांदा,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
5: काता हाथ विच पढ़ के गुदाई वाला अपनी खुदी नो पुरना पै जांदा, सोखी होंदी ने यार दी दीद जिक्री ओ चढ़ के सूली ते तुलना पै जांदा,
0: पै जांदा वाह जी वाह क्या कहने क्या कहने, वाह
5: क्या कौन कहंदा ए इश्क बहर अंदर, कौन कहंदा इश्क दे बहर अंदर जेड़ा डूब जाए ओ मर जांदा, इश्क मंजिल मकसूद ते ले जांदा डूबिया होया भी होवे ते तर
0: जांदा, आए हाय क्या कहने माशाल्लाह क्या कहने,
5: मस्ती इश्क दे विच ओ मस्त रहंदा फिर जो भी चाहे ओ कर जांदा, मंजिल तोड़ दी जांदा मंजिल तोड़ दी पांदा, जिक्री जड़ा इश्क दी तान तो जर जांदा,
0: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब, वाह
5: अच्छा इस चमन दे विच बहार आवे, अज चमन दे विच बहार आवे इस दिन हुसन खिजावां याद रखियां और चुक जातन नी सारे फुल कलियां याद आकर नीचा वहां है याद रखिया।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत
5: रखिया याद ना दिलो भला देवी फुल जासन नीचावा है याद रखिया। ऐसी याद जिक्री तेरी दिल अंदर।
0: वाह जी वाह,
5: ऐसी याद जिक्री तेरी दिल अंदर नाले मस्त दावा है याद रखिया।
0: बहुत खूब बहुत खूब। वाह
5: अच्छा बहु अजब यारो रिश्ते प्यार वाले, बहु अजब यारो रिश्ते प्यार वाले, अच्छी जोड़ के तोड़ न सकिया मैं, किसी कोशिश पर होया ना काम उठा, देख के दिल फिर मोड़ न सकिया मैं।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
5: दर्द दिल दी दवा ना मिले किधरे।
0: वाह
5: दर्द दिल दी दवा ना मिली किधरे, होया टूटा दिल भी जोड़ ना सकिया मैं, थां थां दे कीती तलाश दिखरी, ओ गुमिया दिलदार पर लोड़ ना सकिया मैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह,
5: अच्छा मुझे ईद ने बारे च
0: माशाल्लाह क्या कहने,
5: एक दो शेर थोड़ी नजर करने आ।
0: जी जी,
5: ये आदत रोमने दी आज मर्द बन गई, आदत रोमने दी आज मर्द बन गए, ऐसा तीर फराक दा खार होया, चुप चाप बरसात बरसाए अतरों, भाई गली कूचे वीराने विच जार होया।
0: वाह जी वाह वाह वाह,
5: मिलिया ना सुकून मैखाने नु गया, सजदा रेज मसीद विच यार होया, सजन ईद मिलदे वे सुनिया ईद आई।
0: हाय हाय हाय,
5: सजन ईद मिलदे सुनिया ईद आई, आसम गले अरमाना नु ला रोया।
0: वाह वाह वाह वाह,
5: लग गया।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
5: सजनो ईद आई।
0: वाह
5: ईद आई सजनो ईद आई, पिया कन सदावा के ईद आई।
0: वाह
5: जिस दड़किया उठिया दौड़िया मैं, हर तू तका मैं रावा के ईद आई।
0: वाह वाह,
5: रंगा रंग मखलूक ते रंग लखा, मैं थी पूछन निगावा के ईद आई, इंतजार रहा इंतजार हुन भी, आसम निकलिया हवा के ईद आई।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहे
5: बाबा परवेज जी।
0: जी जी जी,
5: इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की थी ते अगले
0: इंशाल्लाह पापे, बड़ी मेहरबानी ते शुक्रिया इत्तेफाक ने दुआ करने पे। डॉक्टर मालिक साहब बड़े बड़े प्यार ने, बड़े खलूस नाल क्योंकि फुल छिल भेजे ने, तो उन्होंने तो घबराए आने ने कि डॉक्टर की दसो तो कोई खिदमतदारी कोई चीज चाहिए दसनी दसो, तो देखो ये बड़ी खूबसूरती है, देखो डॉक्टर मालिक साहब ने देखो बड़ा प्यार बड़ा खलूस करने देखो नाल, तो भाईजान तुम वरी नहीं करना तुम नाल ठीक है ना, तो घबराए ना, किसी चीज की पापे जरूरत है तो मैं भी हाजिर हाँ पापे, ठीक है बड़ी मेहरबानी पापे, दुआ करने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप आए बाहर आए बड़ी मेहरबानी पापे, अल्लाह हाफिज पापे, अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज पापे, रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये थे हमारे चौधरी फरियाज साहब, आए हाय क्या कहने, चौधरी फरियाज साहब ने क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, मोहम्मद रफ़ी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया माशाल्लाह,
6: अपना भी दिल बहुत बड़ा खुश हो गया है आपकी आवाज सुनकर, ऐसे लगा जैसे रसगुल्ला कानों में आ रहा है।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने
6: और आप ठीक ठाक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र, आपकी दुआ है माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद
6: बड़ी मेहरबानी सर, आप बहुत बिजी जा रहे थे, मैं तो काफी देर से ट्राई कर रहा
0: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम सलाम।

0: सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिस पे हमको नाज है, परवेज जी वो आप ही की तो आवाज है।
1: माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह।
0: और फरमाइश करने वाले मैशिक की तरफ से परवेज जी, आप जी। साहिल चौधरी मुजफ्फर गुरु जी। गुरु जी, बाबी सहबा सिमी बहन, डॉक्टर हिम्मत कुमार, डॉक्टर पाशा, नर्स फरजाना, नर्स अजूली।
1: वाह, क्या कह रहे, वाह।
0: मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुम से कित,
1: वाह।
0: मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुम से कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर रहती हो जिया मेरा घबराता है, नींद आँखों से उड़ जाती है, चांद अगन बरसाता है, चांद अगन बरसाता है, दोनों पहलू जल जाते हैं, दोनों पहलू जल जाते हैं, इस उलझन से मुझको निकालो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुम से कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो।
1: वाह।
0: जब तक तुमको देखूं ना मैं चैन मुझे कब आता है, जब तुम मुझको मिल जाती हो, जब तुम मुझको मिल जाती हो, मेल दवा बन जाता है, दिल से दिल के तार मिला लो ए मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुम से कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, मेरे महबूब तेरे दम से अपने गीतों में तेरा हुस्न नजर आया है, इसलिए दिल तेरी महफिल में मुझे लाया है, रास्ता भूल गया या मेरी मंजिल है यही, रास्ता भूल गया या मेरी मंजिल है यही, कोई बतलाए के क्या खोया है क्या पाया है, मेरे महबूब तेरे दम से जिंदगानी में कई रंग के मोड़ आते हैं, तू सलामत रहे मेरी ये दुआ कहती है, चांद घटता है घटे उसन तेरा बढ़ता रहे, चांद घटता है घटे उसन तेरा बढ़ता रहे, मेरी जन्नत

0: दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में रखा क्या है, वरना इस गम से भरी दुनिया में रखा क्या है, मेरे महबूब तेरे दम से।
1: ओके सारजी, मेनी थैंक्स। इट वाज मोहम्मद रफी साहब और कमाल का दे मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय
0: इवनिंग। सब आपकी दुआओं का नतीजा है, मैं तो कुछ भी नहीं।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने,
0: बड़ी मेहरबानी,
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब, और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और क्योंकि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कीप इलेक्ट्रिक विद द स्टैंडर्ड रेडियो ऑन 103.2 FM
2: Sunrise Radio, your soundtrack.
1: Well, time in the studio is 49 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
5: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
5: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 93.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्द आई विल सी यू अगेन ऑन डेफिनेटली इंशाल्लाह जल्द वेडनेसडे, जब भी आपको मौका मिले आप फोन दोबारा कर सकती हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सईद एहसान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लंदन से हमेशा मुझे याद करते हैं, फ़ोन करते हैं और जल्द अफजाई करते हैं, और आज टाइम की वजह से और बहुत ही कम टाइम है इस आवर का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी वेडनेसडे की रोज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे एक लास्ट कॉल लेनी है और बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने काफ़ी टाइम में इंतज़ार किया है और बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी हमारा साथ दे रही हैं यहाँ पे, वेलकम कहेंगे, जी आई कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: Waalaikum salam. You okay?
0: I'm brilliant, brilliant, fantastic. Where have you been, madam? It's been a long time.
1: It is indeed. I'm very, very sorry. What's happened is we have been abroad and then we've come back from abroad. Then we've gone back to work and then we've not gone back to work and then it's been Eid. So we've had hectic.
0: MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah.
1: But that does not mean that we've not been listening to you.
0: Wow. Kya kehne ye baat, zabardast. And Eid Mubarak to you and your family and friends and colleagues and everybody else and the neighbors and everybody else who tune into the Sunnah Radio.
1: Oh, thank you to yourself and even back to yourself and all your listeners and all your callers and all your friends and all your family too.
0: MashaAllah, MashaAllah, bahut bahut shukriya, thank you very much. And how is it doing, did you enjoy the program today?
1: I did, absolutely. And I'd like to say to everybody that has called in today, you guys are fantastic.
0: Wow.
1: And I am sending my Eid greetings all to you guys, especially to my advice. Nice to hear from him,
0: MashaAllah.
1: All the way down from Scotland. He was up